जा, तू खोई है जिसके लिए इस तरह, भूल जाए तुझे इस तरह जिस तरह, भूल जाती है सुबह गई रात को, भूल जाता है पागल कहीं बात को।

जानते हैं कि मैं कई बरसों से अपनी कलाकृतियों से, अपनी तस्वीरों से लोगों को आनंद देने की कोशिश कर रहा हूं। दरमियान में एक दौर गुजरा, उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि आपकी सेवा करने की मेरी इच्छा, मेरी तमन्ना शायद मुझे छोड़नी पड़ेगी। मेरे पिछले चित्र दो आंखें बारह हाथ के आखिरी दृश्य में बैल से लड़ते वक्त मेरी आंख को जबरदस्त धक्का लगा और उससे यह डर पैदा हुआ कि मेरी आंखों की रोशनी चली जाएगी हमेशा के लिए। आप ये कहेंगे कि मैं मेरा अपना दुख आप सबको क्यों बताने लगा। मैं जानता हूं कि दुख और सुख ऐसे हैं जिन्हें दूसरों को जितना बताएं, जितना बांटें, ये उतने ही बढ़ते हैं। मैं यहां जो आया हूं अपना दुख बांटने के लिए नहीं, बल्कि मुझे उस दुख में जो सुख का अनुभव हुआ वो बांटने के लिए। वैसे तो अब मेरी आंखें बिल्कुल अच्छी हो गई हैं, लेकिन उस समय जब आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे बैठना पड़ा तब मुझे मनुष्य जीवन की और नई अनुभूति हुई। जिंदगी के और नए नए रंग दिखाई दिए, वो रंग हजारों लाखों थे। उनमें से जीवन के कुछ रंग आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं।

नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.9 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका हम सफर RJ संजय। स्वागत है आप सभी का हमारी श्रृंखला श्री कृष्ण की 16 कलाएं के 8वें अध्याय में। हम जानेंगे अलंकार माधुरी, वह कला जिसमें श्री कृष्ण के अलंकार उनके आभूषण और श्रृंगार, भक्ति और सौंदर्य का अद्भुत संगम बन जाते हैं। तो दोस्तों सुनते हैं एक श्री कृष्ण का प्यारा गीत।

नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। अलंकार माधुरी का परिचय होना हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। कृष्ण का श्रृंगार केवल बाहरी सजावट नहीं था, बल्कि उनकी दिव्यता का प्रतीक था। उनके मुकुट में मोर पंख, गले में वनमाला और हाथों में कंगन।

ये सब उनके प्रेम और करुणा की झलक दिखाते थे। उनके अलंकारों की मधुरता ने वृंदावन को सौंदर्य और भक्ति से भर लिया था। तो दोस्तों, सुनते हैं इसी के साथ एक भक्ति।

जय श्री कृष्ण। दोस्तों, भागवत पुराण में वर्णन आता है कि जब कृष्ण गोपियों के बीच आते तो उनके अलंकारों की चमक से वातावरण आलोकित हो जाता। गोपियाँ उनके वनमाला और मोर पंखों को देख कर मंत्रमुग्ध हो जाती। राधा के लिए तो कृष्ण का हर अलंकार प्रेम का प्रतीक था। मोर पंख उनके हृदय की शोभा, वनमाला उनके प्रेम की गहराई थी। तो दोस्तों, इस गहराई के साथ सुनते हैं हम एक सुंदर और प्यारा गीत।

जय श्री कृष्ण दोस्तों, अलंकार माधुरी हमें ये सिखाती है कि जीवन के अलंकार केवल बाहरी सजावट नहीं बल्कि आंतरिक गुणों का प्रतिबिंब है। जब हम अपने जीवन को प्रेम, करुणा और भक्ति से सजाते हैं तो वही सच्चा अलंकार बन जाता है। कृष्ण के अलंकार हमें ये संदेश देते हैं कि सौंदर्य का मूल स्रोत ईश्वर का प्रेम है। तो दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, माल्य नुपुर हरे न लस दान मारे हरि, अर्थात हरि वनमाला हर और नुपुर से अलंकृत होकर अद्भुत शोभा बाते है। यह श्लोक हमें बताता है कि ईश्वर के अलंकार केवल आभूषण नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। तो दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारा संगीत।

नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। यह थी आठवीं कला अलंकार माधुरी। यह कला में सिखाती है कि जीवन का सच्चा अलंकार प्रेम और भक्ति है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे श्री कृष्ण की नवी कला चित्र माधुरी, यानी उनके चित्रों और रूप की मधुरता। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं। ठीक है, चाहे वो हमारी साइकोसोमैटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमाल रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

गए पर हारे प्यार का मैच, क्रिकेट में तो जीत गए पर हारे प्यार का मैच, एक नजर में दिल बेचारा हो गया LBW।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी न कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी, तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म। वन सेकेंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां।

आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। मत वाली ना ठुमक ठुमक चली जाए। जी हाँ, ये अगला गाना है जिसका लिरिक्स इस तरह से है। ये लिरिक्स सुनकर भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है और इसे शैलेंद्र साहब ने लिखा है और मुकेश साहब ने गाया है। शंकर जयकिशन का खूबसूरत संगीत से सजा ये गाना है एक फूल चार कांटे, जो 1960 में ये फिल्म आई थी। ये फिल्म नाम से ही बहुत पॉपुलर रहा क्योंकि नाम भी ऐसा रखा गया जो लोगों के दिलो दिमाग पर छा जाता है। सुनील दत्त, वैदा रेमन, जॉनी वॉकर और धुमाल इस फिल्म के कलाकार रहे और ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें जो हीरो है वो जो है इस फिल्म में लड़की को बताने के लिए या उससे शादी करने के लिए या उसको प्रभावित करने के लिए उस लड़की के चार चाचा है उनको जो है प्रभावित करता है कि मैं एक ऐसा स्पेशलिस्ट व्यक्ति हूं करके वो नाटक करता है। बप्पी सेन के निर्देशन में बनी ये फिल्म शंकर जयकिशन का संगीत से सजा, श्याम भवन के द्वारा निर्मित इस फिल्म में एक गाना है जो एम अक्षर से शुरू होता है। जी हाँ, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था। तो चलिए इस गीत का आनंद उठाते हैं, फिर बात करते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर काबो का सफर। बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना, आशा करता हूँ आप सभी को बड़ा अच्छा लग रहा है। सूदिंग गाना था, एक फूल चार कांटे इस एल्बम से था। अब आइए आगे लेके चलता हूँ मैं 1967 की ओर, जहाँ पर एक फिल्म आई थी पत्थर के सनम। जी हाँ, ये भी फिल्म बहुत ही हिट रही, इसके सारे गाने ही बहुत ही खूबसूरत रहे। और जो गाना मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो भी बहुत अच्छा और एम अल्फाबेट से है। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा, लता मंगेशकर मुकेश जी का गाया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का खूबसूरत संगीत से सजा ये गाना अभी आपके लिए पत्थर के सनम का। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीति आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना, महबूब मेरे, महबूब मेरे। तुम हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत लिरिक्स इस गाने के। आप अगर थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो याद भी हो जाता है, जैसे मुझे कुछ लाइनें याद हो गई जो मैंने गुनगुना के आपको सुनाया। जी हाँ, मनोज कुमार, वैदा रहमान, मुमताज और प्राण पर पिक्चराइज किया गया था ये फिल्म, और राजेश नाम का एक जो व्यक्ति है उस पर ये फिल्म बनी थी। और इसमें क्लाइमेक्स ये था कि एक ही लड़के से दो लड़कियां प्यार करती है, तो इसमें ये बड़ी मुश्किल वाली चीज आ जाती है और फिर बाद में सस्पेंस क्लियर हो जाता है। तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राजा नवाते ने और एनएन नाडियर वाला ने इस फिल्म को निर्माण किया था। तो चलिए, इस गीत को आपने सुना, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं एक और गीत की तरफ। जी हाँ, अब 1962 की तरफ चलते हैं। एक फिल्म आई थी जिसका नाम था आशिक। ये फिल्म भी बहुत ही पॉपुलर रहा और इसमें भी एक गाना है जो एम अक्षर से। जी हाँ, आशिक जो फिल्म है ये राज कपूर, पद्मिनी, लीला चिटनिस और केस्टो मुखर्जी पर पिक्चराइज किया गया। और केस्टो मुखर्जी का आप जानते हैं, कॉमेडी कलाकार है, उनके आते ही लोग ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। क्योंकि उनकी उपस्थिति भी अपने आप में एक चेहरे की मुस्कान बन जाती है। और यहाँ पर इस फिल्म में, आशिक फिल्म में, प्रताप नाम का एक व्यक्ति का किरदार है और वो अपने छोटे भाई गोपाल से बहुत प्यार करता है। और इस तरह से ये चीजें जो है दोनों भाइयों के बीच की कड़ी में एक प्रेमिका आ जाती है, तो ऐसा ही एक कहानी बताया गया है। तो चलिए, अब कहानी तो मैं पूरा नहीं सुना सकता हूँ क्योंकि बहुत कम टाइम में आपको बहुत सारे गीत जो सुना रहे हैं। तो शैलेंद्र साहब का लिखा एक गाना है, लता मुकेश ने गाया है, इस गीत का आनंद लुटाते हैं। महताब तेरा चेहरा, खुश रहो, खुशियां बांटो।

आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। जी हाँ, आइए आगे बढ़ते हैं। आप सभी बहुत ही अच्छा फील कर रहे होंगे क्योंकि काफी पॉपुलर गाने आप सुन रहे हैं और आप चलते हैं मेले की तरफ। जी हाँ, मेला आप शायद देखे होंगे लेकिन कई बार रंगीन दिवाली भी होती है जिसमें चिरागे जलती हैं। ऐसा ही कुछ भाव वाला अगला गाना है, राजेंद्र कृष्ण साहब का लेखा, लता मंगेशकर का खूबसूरत आवाज से सजा ये गाना, रवि साहब का संगीत है, फिल्म नजराना। जी हाँ, नजराना फिल्म 1961 में आई थी और नजराना ये शब्द ही अपने आप में आप सभी को पता चल गया होगा कि किस तरह का फिल्म होगा। एक गिफ्ट है, जी हाँ, और ये गिफ्ट किस तरह का काम करता है आइए देखते हैं। इस फिल्म की कहानी गीता पर है। गीता एक कैरेक्टर है, एक लड़की है जिसके ऊपर ये फिल्म बनी और वो गरीब है लेकिन जीवन शैली जो है उसकी भी सभी लोगों की तरह आम जीवन शैली होती है। वो भी कॉलेज में पढ़ने जाती है और वहां पर फिर दोस्ताना हो जाता है और राज नाम का एक लड़के से उसकी जो है दोस्ती बन जाती है और फिर यहाँ से कहानी जो है आगे बढ़ती है। तो चलिए कहानी को कभी फिर सुनाएंगे लेकिन अब सीधे मैं आपको गाने की तरफ ले चलता हूँ। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो।

आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है खाबों के सफर में। मैं हूं आपका हम सफर सनी। कहते हैं, डर मुझे भी लगता है फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। जी हाँ दोस्तों, कहने का भाव यही है कि जब भी हम लोग अपनी मंजिल को तय करते हैं, जब चलने लगते हैं, तो बीच में कई रुकावटें आती हैं, कई पत्थर आ जाते हैं, उन्हें देखकर हमें डरना नहीं चाहिए। हमें वहां पर रुककर रास्ता निकाल लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग इस खाबों के सफर में। अब ले चलता हूं आपको एक और खूबसूरत गीत की तरफ। जी हाँ, लेकिन एक खूबसूरत फिल्म भी थी, 1960 की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें दिल अपना और प्रीत पराई ये फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म में एक बहुत ही सुंदर स्टोरी बताई गई। अब वो स्टोरी क्या है वो आपको सोचना है, समझना है। लेकिन इसके जो एक्टर थे वो बड़े दमदार एक्टर थे, किशोर शाहू, मीना कुमारी, राजकुमार और नादिरा, इन पर ये फिल्माया गया था। और राज कपूर के दमदार डायलॉग्स भी आपने सुना होगा, तो उनकी डायलॉग डिलीवरी बहुत पॉपुलर रहे। आज वो नहीं है, लेकिन उनकी डायलॉग डिलीवरी कभी आप सुनिए, बड़ा मजा आएगा और बहुत ही सुंदर स्टाइल से वो डायलॉग्स बोलते हैं। तो दिल अपना और प्रीत पराई ये एक हिंदी प्रेम कहानी वाली फिल्म है जो 1960 में रिलीज हुई थी। इसमें किशोर शाहू जो है एक्टर भी है तो डायरेक्टर भी है, और इस फिल्म के निर्माता कमल अमरोही है, जिन्होंने बहुत कम फिल्म बनाई लेकिन बहुत अच्छे फिल्में बनाई है। तो आइए इस फैमिली ड्रामा दिल अपना प्रीत पराई का ये खूबसूरत गाना अभी आपको सुनाते हैं, जिसे शैलेंद्र साहब ने लिखा है, लता मंगेशकर ने अपनी आवाज दी है, शंकर जयकिशन का खूबसूरत संगीत से सजा ये गाना आपके लिए खास। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीति आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। जी हाँ, आपके SMS में एक हमारे प्यारे दोस्त ने बहुत ही प्यारा सा SMS मुझे भेजा था पिछले एपिसोड के लिए, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। अभी एक ही लाइन है लेकिन बड़ा खूबसूरत लाइन है, देखिए आप जरा ध्यान से सुनिए। जो नहीं है हमारे पास वो ख्वाब है, जो नहीं है हमारे पास वो ख्वाब है, पर जो है हमारे पास वो लाजवाब है, पर जो है हमारे पास वो लाजवाब है। जी हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत लाइन थी जो मैंने आपको सुनाया। और चलिए अब आखिरी गाने की तरफ मैं आपको ले चलने वाला हूँ। ये आखिरी गाना आपके लिए नागिन इस एल्बम से, जो 1954 में रिलीज हुई थी। ये एक फिल्म है जिसमें सुनील नाम के एक व्यक्ति पर पिक्चराइज किया गया है। प्रदीप कुमार, वैजंती माला, जीवन और IS जवार इस फिल्म के बड़े कलाकार हैं। इस फिल्म की कहानी इस तरह, सुनील नाम का एक व्यक्ति शिकार करने जाता है और गलती से वो जो गोली चलाता है वो शिकार को न लगकर किसी सांप को लगता है और वो मर जाता है और वो नाग होता है। और ये देखकर नागिन वहां आती है और जिसने गोली चलाई थी सुनील उसको डसना चाहती है और वो बच निकलता है। फिर स्टोरी शुरू हो जाती है, नागिन सुनील को मारने के पीछे दौड़ती है और सुनील हर बार बच जाता है। तो चलिए आखिरी में क्या होता है ये आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। और ये फिल्म नंदलाल जसवंत लाल ने डायरेक्ट किया था, हेमंत कुमार साहब का खूबसूरत संगीत से ये फिल्म सजी है और बहुत ही प्यारी जो म्यूजिक जो है इसका बहुत ही खूबसूरत है। और इस फिल्म का ये गाना जैसे कि मेरा दिल ये पुकारे आजा। जी हाँ, राजेंद्र कृष्ण साहब का लिखा, लता मंगेशकर का गाया, हेमंत कुमार का खूबसूरत संगीत से सजा ये गाना आखिरी गाना आपको छोड़े जा रहा हूँ। और इसी के साथ मैं आपसे चाहूंगा इजाजत और कहना चाहूंगा, अपने मिशन में कामयाब होने के लिए, अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त निष्ठावान होना पड़ेगा, तभी आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप अपने लक्ष्य के प्रति एक निष्ठावान रहें, एक चित्त रहें, एकाग्र चित्त रहिए और पूरा ध्यान उस पर रहे आपका, और आप अपनी मंजिल पर बहुत जल्दी पहुंचे। ऐसी शुभकामना के साथ मैं आपसे चाहूंगा इजाजत। और हाँ, आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो जरूर मैसेज करके अपनी भावनाओं को हम तक पहुंचाइए, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, आप सदा खुश रहें, मस्त रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं चाहूंगा आपसे इजाजत। सलाम नमस्ते, खमा गनीसा, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियाँ।

Hi, handsome. यहाँ बैठ सकती हूँ? माफ कीजिएगा।

0: हाय प्रिंस, अकेले हो? शादी नहीं की? प्यार भी नहीं?
1: इन्होंने अभी तक प्यार भी नहीं किया।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन, वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: इसी की एक लाइन, मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चले होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग, द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं, द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, जैसे किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है, किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: रोज अपन दुखांची चर्चा करतो, माणसाचं मन त्यातल्या त्यात अंतर्मन जे आहे ते नकारात्मक गोष्टी लवकर स्वीकारतं, त्यामुळं आपण आपल्या बाहेरच्या वातावरणाला बाहेरच्या मनाला

0: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी, पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा तीन दिन बिल्कुल नहीं, तो वो तीन दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: बाय बाय पंकज।
2: क्यों भाई, तू कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं गांव जा रहा हूँ यार।
2: और मुझे छोड़ के? मैं यहाँ किसके साथ रहूंगा? मैं तुझे कितना मिस करूंगा यार, तू मुझे छोड़ के क्यों जा रहा है?
1: तो मैं भी करूंगा बहुत तुझे मिस, पर यार नाना से मिले मुझे 6 साल हो गए।
2: अच्छा, नाना से मिले 6 साल हो गए, ठीक है। पर अपना ध्यान रखना।
1: हाँ, तू भी अपना ध्यान रखना।
0: अरे पंकज, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब भी तो तुम्हारी फैमिली है ना।
2: हाँ दीदी, वो तो है, लेकिन मेरे भाई की कमी शायद कोई पूरी नहीं कर सकता।
0: बिल्कुल, लेकिन सैंडी अपने नाना से मिलने जा रहा है, वो भी 6 साल बाद। ये तो बहुत अच्छी बात है सैंडी।
1: हाँ दीदी,
0: क्योंकि नाना नानी, दादा दादी, ये सब जो होते हैं, ये हमारी फैमिली का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हैं, है कि नहीं बच्चों?
3: हाँ दीदी।
0: तो चलो आज हम सब अपनी फैमिली के बारे में ही बात करते हैं, ठीक है?
1: ओके।
0: तो पहले आकाश, तुम बताओ तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है?
4: मेरी फैमिली में 5 लोग हैं, मैं, मम्मी, डैडी, दादा और दादी। पहले बुआ भी थी, लेकिन अभी उनकी डेथ हो गई है, इसीलिए वो अब हमारे साथ नहीं है।
0: और दादा दादी, मम्मी पापा के बारे में हमें कुछ बताओगे? नहीं,
4: हाँ बताऊंगा ना। मेरे पापा मॉडल इंसुलेटर में सर्विस करते हैं, मेरे दादा यहाँ लिटरेचर डिपार्टमेंट में सेवा देते हैं, और मेरी मम्मी और दादी दोनों हाउसवाइफ हैं।
0: अरे वाह, और हाउसवाइफ होम मेकर्स हो रहे हैं, जो कि पूरे घर को चलाने का जॉब बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं।
5: हाँ दीदी।
4: हाँ दीदी,
0: है ना। और भुवना, तुम्हारे घर में कौन कौन है?
6: 5 लोग।
0: 5 लोग कौन कौन?
6: मेरे घर में माँ, पापा, दादी, दादा और मैं।
0: दादी, दादा, मम्मी, पापा और आप हो?
6: हाँ।
0: अच्छा, तो आपका सबसे फेवरेट फैमिली मेंबर कौन है?
6: मेरे मम्मी पापा।
0: मम्मी पापा दोनों? और दादा दादी
6: भी पसंद है।
0: मतलब कि पूरी फैमिली ही भुवना की फेवरेट है, है ना?
6: हाँ दीदी, दादी और बुआ रहते थे, एक शादी हो गई चली गई, वो भी ओमान, दो शादी हो गई चली गई अमेरिका, तीसरी बुआ मेरी शांतिवन में रहती है।
0: अरे वाह, मतलब आपके पास तो घूमने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कभी ओमान, कभी अमेरिका और कभी राजस्थान, जहाँ पे आप अभी हो।
6: हाँ दीदी,
0: है ना। देखा फैमिली होने के कितने फायदे होते हैं।
5: हाँ दीदी।
4: हाँ दीदी।
0: और सैंडी, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है?
1: मेरे फैमिली में 4 लोग हैं।
0: 4 लोग कौन कौन?
1: मैं, पापा, मम्मी और भैया।
0: अच्छा, तो और तुम्हारी फैमिली मेंबर्स के बारे में हमें और बताओ।
1: मम्मी हाउसवाइफ है, भैया शांतिवन में सेवा देते हैं, और पापा मॉडर्न स्केटर में।
0: अरे वाह। और भुवना, तुमने तो अपनी फैमिली के बारे में हमें बताया ही नहीं।
6: मेरी माँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, HSBC में काम करती है, और मेरे पापा लॉयर है, और मेरे पापा स्टील कंपनी में सीनियर मैनेजर है।
0: अरे वाह। और पंकज, अपनी फैमिली के बारे में हमें बताओ।
2: दीदी, मेरी फैमिली में 5 मेंबर्स है, मैं, पापा, मम्मी और 2 मेरी सिस्टर है।
0: अच्छा, तो आपकी सिस्टर्स क्या करते हैं?
2: मेरी दोनों सिस्टर्स मैरिड है, मुझसे बड़ी हैं।
0: और वो राजस्थान में ही रहते हैं?
2: नहीं दीदी, मेरी छोटी सिस्टर दिल्ली में रहती है और बड़ी सिस्टर पुणे में रहती है।
0: अरे वाह, ये तो दोनों ही बहुत अच्छी जगह है।
2: हाँ दीदी।
0: और आपके पापा क्या करते हैं?
2: मेरे पापा प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है।
0: अच्छा, और आपके घर में आपका सबसे फेवरेट कौन है?
2: मेरा सबसे फेवरेट है मेरी मम्मी और मेरी छोटी दीदी।
0: मेरी मम्मी? और मम्मी आपकी फेवरेट क्यों है पंकज?
2: क्योंकि वो मुझे हमेशा सपोर्ट करती है और मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करती है।
0: हाँ, अब भाई बेटे तो मम्मी के लाडले होते हैं।
2: हाँ दीदी,
0: है ना। और सैंडी, आपकी फेवरेट कौन है?
1: दोनों जने,
0: मम्मी और पापा।
1: हाँ।
0: और आकाश?
4: हाँ?
0: आपका फेवरेट फैमिली मेंबर कौन है?
4: मेरे फेवरेट फैमिली मेंबर सारे हैं,
0: सबके सब। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और भुवना का तो फेवरेट मम्मी और पापा है, और दादा और दादी भी है।
6: हाँ दीदी।
0: अच्छा ये बताओ भुवना, जब तुम्हारा मूड खराब होता है या किसी बात पे तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तो सबसे पहले किसके पास जाती हो?

0: मान लो स्कूल में कोई बात हुई और आपका मूड खराब हो गया, किसी फ्रेंड से झगड़ा हुआ, तो सबसे पहले किसको जाके बताते हो?
1: पापा।
0: पापा को? और फिर पापा क्या कहते हैं आपसे?
1: मम्मी को कहने के लिए।
0: तो फिर मम्मी से क्या बात करते हो आप?
1: मम्मी मुझे कंसोल करती है और मुझे सपोर्ट देती है और सजेशन देती है।
0: मम्मी आपको सजेशन देती है कि उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए?
1: हाँ दीदी।
0: अच्छा, और आकाश जब आपका मूड अच्छा नहीं होता या किसी से कोई झगड़ा हो जाता है तो घर में किसके पास जाते हो?
2: दीदी मैं किसी से क्या पास नहीं जाती।
0: किसी को बताते नहीं हो घर पे?
2: और अगर मुझे पता है कि अगर जैसे आज मेरे इस फ्रेंड के साथ मेरा झगड़ा हुआ है, दूसरे दिन वो वापस मेरा फ्रेंड बन जाएगा।
0: बात तो बिल्कुल सही है,
2: इसलिए बता के क्यों झगड़े मोल लेना।
0: अच्छा मान लो आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम आई जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो सबसे पहले घर में किसको बताओगे?
2: मम्मी को।
0: मम्मी को? और मम्मी को क्यों?
2: क्योंकि मम्मी को अगर बताऊंगा ना तो मम्मी अच्छे सजेशन देगी, उस प्रॉब्लम को हल करने की नुस्खे बताएगी।
0: मम्मी अच्छे सजेशन देती है सभी को।
1: हाँ दीदी।
0: और पंकज आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है या कोई ऐसी बात होती है जो आपको शेयर करनी होती है तो घर में किससे शेयर करते हो?
3: मैं अपनी फैमिली में किसी से शेयर नहीं करता।
0: किसी को भी नहीं बताते?
3: नहीं, अगर फैमिली की बात है तो फैमिली से।
0: अच्छा, अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम आती है या किसी चीज का आपको स्ट्रेस होता है?
3: मैं अपनी मम्मी से शेयर करता हूँ।
0: और मम्मी उस सिचुएशन में आपसे क्या बोलती है?
3: वैसे मुझे जरूरत पड़ती नहीं कभी किसी से शेयर करने।
0: आज तक कभी कोई जरूरत नहीं पड़ी?
3: नहीं, मैं अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर लेता हूँ।
0: खुद सॉल्व कर लेते हो?
3: हाँ दीदी।
0: टेंशन में तो नहीं आते?
3: नहीं, टेंशन में आता हूँ पर फिर भी कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता।
0: मतलब आप टेंशन में आते हो लेकिन सोच समझ के उसका रास्ता निकाल लेते हो?
3: हाँ दीदी।
0: अच्छा, और सैंडी आप क्या करते हो?
4: मैं मम्मी पापा दोनों से शेयर करता हूँ। जब रात खाना खाने बैठते हैं तो मम्मी पापा दोनों साथ में, सब फैमिली साथ में, तो उस टाइम बता देता हूँ।
0: मतलब कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो रात को आप दोनों से शेयर करते हो?
4: हाँ दीदी।
0: और फिर मम्मी पापा क्या कहते हैं आपको?
4: फिर वो जो सॉल्यूशन होता है वो मुझे बता देते हैं।
0: अच्छा, अरे बाप, ऐसे मम्मी पापा तो दुनिया में एक्सपीरियंस है, हमसे और ज्यादा पहले आए हैं ना।
4: हाँ।
0: उनको सब चीजें पता होती हैं, हमारी एज में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो भी उन्हें पता होती हैं, और उसके क्या सबसे बेस्ट सॉल्यूशंस हैं वो भी उन्हें पता होते हैं। तो इसीलिए हमारी जिंदगी में ऐसी कोई प्रॉब्लम आए जो हम सॉल्व ना कर पाए तो हमें तुरंत अपने मम्मी पापा को बताना चाहिए। अच्छा ये बताओ आकाश कि घर में कोई डांटता है क्या?
2: हाँ।
0: अच्छा, मतलब आप शैतानी करते हो?
2: शैतानी? हाँ करता हूँ।
0: अच्छा, जब शैतानी करते हो या कोई ऐसी बात होती है तो किससे डांट पड़ती है?
2: अगर दोपहर में डैड पे गेम खेलता हूँ तो दादी डांटती है, अगर रात को जल्दी नहीं सोता हूँ तो मम्मी डांटती है, अगर पढ़ाई नहीं करता हूँ तो पापा डांट, और अगर ज्यादा टीवी देखता हूँ तो दादा डांट।
1: एक एक डांट के लिए एक एक लीडर हो गए,
4: बटा हुआ है।
0: अच्छा, क्योंकि अलग अलग शैतानी पे अलग अलग लोगों से डांट पड़ती है, लेकिन वो डांट से कभी आपको बुरा तो नहीं लगता?
2: नहीं नहीं,
4: मजा आता होगा।
2: नहीं, डांट से मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन अच्छा लगता है कि कम से कम मुझे कोई डांटने वाला तो है, कम से कम कोई तो मेरी केयर करता है। वरना कुछ बच्चों के मम्मी पापा ऐसे होते हैं जिनके मम्मी पापा ही नहीं होते, वो तरसते एक डांट के लिए ताकि कोई मेरी केयर करे, कोई मुझे डांटे। और जैसे ये बात तो सही है कि अगर कोई हमें डांटता इसीलिए है क्योंकि वो हमारी केयर करता है, वो हमारा अच्छा चाहता है इसलिए हमको डांटता है।
0: ये बात तो आकाश आपने बहुत ही अच्छी कही और बहुत ही समझदारी की कि मम्मी पापा या बड़े हमें तभी डांटते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमारी केयर करते हैं, है ना?
4: हाँ दीदी।
0: इसीलिए उस डांट का बुरा हमें नहीं मानना चाहिए। भुवना, आपको कभी डांट पड़ती है घर में?
1: बहुत कम पड़ती दीदी, और बहुत ज्यादा दादा डांटते हैं, और जब मम्मी बहुत कम डांटती है फिर भी मुझे कभी रोना नहीं आती, लेकिन मेरे पापा डांटते तो ऐसे ही आंसू नदी जैसे बहते।
0: पापा डांटते हैं कभी कभी, लेकिन जब पापा डांटते हैं तो आंसू आ जाते हैं, ऐसा क्यों?
1: क्योंकि जब पापा डांटते हैं मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं क्यों की ऐसा, मेरे पापा डांटने तक इतना ऊपर गई मैं, मुझे बुरा लगता है।
0: आपको बुरा लगता है कि आपने ऐसी गलती क्यों की कि पापा ने डांटा?
1: हाँ दीदी।
0: लेकिन कभी हमसे ऐसी कोई गलती

0: जाए तो हमें उसे छुपाना नहीं चाहिए, बता देना चाहिए। डांट पड़ेगी तो हम उसे सुधार सकते हैं, है ना? और पापा भी तो इसीलिए डांटते हैं। और पंकज, आपकी डांट पड़ती है घर पे कि नहीं?
1: दीदी, डांट तो हमेशा पड़ती रहती है।
0: डांट हमेशा पड़ती रहती है, और घर में कौन डांटता है आपको?
1: मम्मी पापा दोनों।
0: दोनों क्यों डांटते हैं मम्मी पापा?
1: पापा इसलिए डांटते हैं क्योंकि कभी कभी मैं उनकी हेल्प कराने के लिए साइड पे नहीं आता, और मम्मी इसलिए डांटती है क्योंकि घर पे कोई छोटा मोटा काम होता तो वो मैं नहीं करता।
0: और आप छोटा मोटा काम जो मम्मी बताती है वो क्यों नहीं करते हो?
1: अच्छा नहीं लगता मुझे करना, क्योंकि मैं कभी खेलने चले जाता हूँ और कभी कहीं बिजी होता हूँ, तो इसलिए घर का काम नहीं।
0: लेकिन मम्मी के पास हेल्प कराने के लिए अभी तो और कोई भी नहीं है।
1: हाँ दीदी,
0: है ना? तो उनकी मदद तो आपको ही करनी पड़ेगी।
1: हाँ मुझे पता है, मुझे ही मदद करनी पड़ेगी, इसलिए मैं कभी बुरा भी नहीं मानता।
0: सही बात है भाई, अगर मम्मी को हेल्प चाहिए तो हम बच्चे ही तो हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि पापा तो ऑफिस जाते हैं पर हर वक्त नहीं होते। तो बच्चे ही हैं जो मम्मी लोगों की हमेशा घर पे मदद कर सकते हैं और करनी भी चाहिए।
2: मैं मेरी नानी की हेल्प करती हूँ दीदी।
0: अपनी नानी की क्या हेल्प करते हो भुवना?
2: बर्तन अंदर रखना धुलाई के बाद, क्योंकि मेरी मम्मी रोज मॉर्निंग 8:30 पापा और मम्मी निकलते हैं, रात 8:30 को आते हैं।
0: अच्छा, तो फिर आप अपनी नानी की घर संभालने में मदद करते हो?
2: हाँ दीदी।
0: और सैंडी?
3: मुझे तो मम्मी ज्यादा डांटती है।
0: मम्मी ज्यादा डांटती है क्यों?
3: और मम्मी से तो कभी टाइम पे खाना नहीं खाया, कभी कुछ।
0: लेकिन पापा तभी डांटते हैं जब उन्हें लगता है मेरी लाइफ में कोई बड़ी सी गलती हो रही है, और मम्मी हमारी फिक्र करती है, तो अगर हम खाना नहीं खाते या फिर टाइम से कुछ नहीं करते तो इसलिए डांट पड़ती है मम्मी से।
3: हाँ दीदी,
0: जिसका किसी को भी बुरा नहीं लगता है यहाँ पे, मुझे लग रहा है। तो मुझे ये बताओ भुवना, आपको पापा की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या लगती है?
2: पापा बहुत अच्छे से बात करते हैं। किसके साथ कैसे बात करना, वो इतने अच्छे से बात करते हैं कि दूसरों को बुरा नहीं लगे और समझ भी जाए।
0: अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छी क्वालिटी है। और आपको क्या अच्छा लगता है आकाश अपने पापा के बारे में?
4: ये मेरे पापा के बारे में यही अच्छा लगता है कि जब भी किसी के साथ मेरा झगड़ा हो जाता है ना, तो उससे मेरे को पापा बचा लेते।
0: मतलब पापा एक तरह से हमारी प्रोटेक्शन है।
4: हाँ,
0: है ना? और पंकज, आपको अपने पापा की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या लगती है?
1: मुझे मेरे पापा की सबसे अच्छी क्वालिटी लगती है, वो बहुत ऑनेस्ट है।
0: ऑनेस्ट है?
1: हाँ दीदी।
0: अच्छा, मतलब कभी भी किसी भी सिचुएशन में वो ऑनेस्टी को नहीं छोड़ते?
1: हाँ दीदी।
0: ये तो सच में बहुत अच्छी क्वालिटी है, इसे तो हम सबको सीखना चाहिए। और सैंडी, आपको?
3: मेरे पापा मुझे अच्छे इसलिए लगते हैं क्योंकि हमारे घर में कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए वो कभी टेंशन नहीं लेते और फैमिली को टेंशन में आने नहीं देते, खुद सॉल्व कर लेते, मतलब फैमिली को हैप्पी रखते हैं। कूल पापा।
0: मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो पापा सब संभाल लेते हैं।
3: हाँ।
0: और मम्मी की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या लगती है भुवना?
2: मम्मी बहुत अच्छी से टाइम मैनेजमेंट
0: मतलब अपना ऑफिस भी संभालती है, घर भी और आपको भी।
2: हाँ दीदी।
0: अरे वाह। और आकाश?
4: मुझे मम्मी के अंदर ये अच्छी क्वालिटी लगती है क्योंकि मम्मी हमेशा मुझे सपोर्ट करती है, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाए मम्मी हर मेरी हर ख्वाहिशें पूरी करती है।
0: मम्मी हर ख्वाहिशें पूरी करती है जो भी वो कर सकती है। और पंकज?
1: मुझे मेरी मम्मी की तो सारी क्वालिटी पसंद है, मेरी मम्मी में हर तरह की क्वालिटी।
0: जैसे
1: खाना बनाना, पापा के लिए नाश्ता बनाना, खुद के लिए अलग से नाश्ता बनाना, और टाइम का मैनेज अच्छे से कर लेती है।
0: मम्मी सबके पसंद का खाना भी बनाती है और टाइम मैनेज भी करती है। और सैंडी?
3: मेरी मम्मी मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि मेरी मम्मी ना घर का जो बजट बनाती है ना वो सबसे बेस्ट है।
0: मम्मी इमोशनल सपोर्ट के साथ साथ फाइनेंशियल सपोर्ट भी बहुत अच्छे से करती है।
3: हाँ, और मम्मी सुबह सबसे पहले उठना, फिर पापा का नाश्ता बनाना, फिर भैया का, फिर मेरा, फिर खुद का, फिर घर का सब काम करना, इसलिए मेरी मम्मी बहुत अच्छी है।
0: सही बात है, मम्मी लोग सुबह से जब काम करना शुरू करते हैं तो शाम तक करते रहते हैं।
3: और सबसे लेट सोना।
0: अच्छा मुझे ये बताओ, अब तुम लोग के घर में सबके घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं?
2: हाँ दीदी।
0: तो ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में सबसे अच्छी क्वालिटी भुवना, ग्रैंड पेरेंट्स आपको क्यों अच्छे लगते हैं बताओ?
2: मेरी ग्रैंड माँ इसलिए पसंद है क्योंकि बहुत चकाता साथ बनाती है और मेरे ग्रैंडपा बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं मुझे, साइंस में बहुत हेल्प करते हैं, जब भी वो मुझे मैथ्स में हेल्प करते हैं मुझे अच्छे मार्क्स आते हैं।
0: और वो बहुत प्यार से आपको पढ़ाते होंगे है ना?
2: और स्ट्रिक्ट है दीदी को,
0: थोड़ी स्ट्रिक्ट है। आकाश, आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपको क्यों अच्छे लगते हैं?
4: मुझे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स इसीलिए अच्छे लगते हैं, जो मेरी दादी है ना वो हमारे पूरे परिवार में सबसे अच्छे स्वीट्स बना लेती है। और दादा की ये खासियत है कि उनका मैथ इतना अच्छा है ना कि कैलकुलेटर और कंप्यूटर भी सामने फेल हो जाएगा लेकिन उनका मैथ आगे रहेगा।
0: अरे वाह, क्या बात है। और सैंडी, आपके ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ रहते हैं?
3: वो अभी इस दुनिया में नहीं।
0: और आपके नाना नानी?
3: नानी नहीं है, नाना है।
0: जिनसे आप मिलने जाने वाले हो?
3: हाँ।
0: तो वो आपको क्यों अच्छे लगते हैं?
3: क्योंकि नाना मुझे बहुत प्यार करते हैं।
0: नाना आपको बहुत प्यार करते हैं?
3: हाँ।
0: हमारे जो नाना नानी दादा दादी होते हैं वो हमें अपनी मम्मी पापा से भी ज्यादा प्यार करते हैं।
2: हाँ दीदी
0: है ना?
3: क्यों? हाँ दीदी।
0: और पंकज, आपके ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ रहते
1: हैं? मेरी नानी है।
0: नानी कहाँ रहती है आपकी?
1: मेरी नानी अपने गाँव में बिहार में रहती है।
0: अच्छा, तो नानी से मिलने जब जाते हो तो नानी की कौन सी ऐसी बात है आपको सबसे अच्छी लगती है?
1: मैं जब अपनी नानी से मिलने जाता हूँ और जब वापस लौटता हूँ तो मेरी नानी मुझे अभी भी 10 रुपए देती है।
0: हमारे नाना नानी दादा दादी जो भी हमें दे सकते हैं, जितना भी दे सकते हैं, वो हमेशा दिल से देते हैं, इसलिए वो 10 रुपए की भी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। अच्छा मुझे ये बताओ, अपनी फैमिली के साथ जब आप लोग टाइम स्पेंड करते हो तो मम्मी के साथ या पापा के साथ बीता हुआ ऐसा कोई इंसिडेंट आपको याद है जो अभी तक आपको बहुत अच्छा लगता है सोच के? कोई भी ऐसा पल याद हो जब आपका रिजल्ट आया हो या फिर घर में कुछ हुआ हो और मम्मी पापा के साथ वो एक मेमोरी बन गया हो?
1: मुझे याद है दीदी।
0: हाँ पंकज बताओ।
1: मेरे लास्ट बर्थडे पे मेरे मम्मी और पापा पहली बार साथ में उन्होंने फोटो क्लिक कराई थी।
0: पहली बार?
1: हाँ दीदी।
0: अरे वाह, और आपका बर्थडे तो स्पेशल हो गया।
1: हाँ बहुत स्पेशल बर्थडे था, हमने बहुत एंजॉय भी करा और मम्मी पापा ने डांस भी किया था।
0: अरे वाह। और भुवना, आपको कुछ याद है ऐसा?
2: हाँ दीदी, मैं मम्मी पापा और मेरे अंकल जब हम स्कूल गए ना वो बहुत अच्छा।
0: कहाँ गए?
2: स्कूल।
0: अच्छा, जब आप फैमिली के साथ ट्रिप पे गए तो वो बहुत अच्छा मोमेंट। अच्छा अब मुझे एक ऐसी बात बताओ जो आप अपने मम्मी पापा या किसी भी फैमिली मेंबर से कहना चाहते तो हो लेकिन कभी कह नहीं पाते, क्या कोई ऐसी बात है? किसी चीज का डर हो या कभी ऐसा लगे कि हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, चाहे वो प्यार हो चाहे वो कोई और बात हो, लेकिन हम अपने फैमिली मेंबर से वो नहीं करते? भुवना,
2: मैं ये कहना चाहती हूँ कि माँ पापा हमें समर को वंडरला चलते हैं प्लीज।
0: अच्छा, जब आप लोग गलतियाँ करते हो या कोई ऐसी गलती आपसे हो जाती है, शरारतें करते हो, तो क्या आपके मम्मी पापा को घर पे सब चीजें बता देते हो या डर रहता है कि बताएंगे तो डांट पड़ेगी?
2: मैं बताती हूँ दीदी।
3: हाँ मैं भी बता देता हूँ।
0: पंकज?
1: दीदी मैं बहुत कम बताता हूँ।
0: कम बताते हो, क्यों?
1: क्योंकि ज्यादातर मैं अपनी गलतियों को या कोई मिस्टेक्स हो जाती तो मैं उसे खुद मैनेज कर लेता हूँ।
0: किसी चीज का डर तो नहीं होता आपको?
1: नहीं, डर नहीं होता।
0: और आकाश?
4: दीदी मैं तो बताता ही नहीं।
0: बताते ही नहीं हो, क्यों?
4: क्योंकि मुझे पता है कि अगर जो मेरे साथ कोई गलती हुई है तो वो अगले आने वाले दिन में अपने आप सॉल्व हो जाएगी, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं।
0: लेकिन अगर कोई बड़ी गलती आपसे हो जाए तो मम्मी पापा को इन्फॉर्म रखना बहुत जरूरी
4: है। हाँ, ऐसे तो इन्फॉर्म रखता हूँ लेकिन वैसे नहीं रखता हूँ,
0: क्योंकि वही हमें समय पर मदद कर सकते हैं।
2: हाँ दीदी।
0: अच्छा मुझे ये बताओ, तुम लोग अपने मम्मी पापा और नाना नानी सबसे प्यार तो बहुत करते हो, उन्हें बताते हो कि नहीं?
2: हाँ दीदी।
0: बताते हो? क्या बताते हो भुवना?
2: मेरी मम्मी पापा एनिवर्सरी में मैंने एक एक्सप्लोडिंग बॉक्स बनाई जिसमें मैंने क्या किया, मेरी सारी फोटोज, मेरी मम्मी और पापा की मैरिज फोटोज और मेरे पापा के बचपन की फोटोज, मेरी मम्मी की बचपन की फोटोज उनके फ्रेंड्स के साथ, वो सब मैंने जेरोक्स ले ली। तो मैंने सारी फोटोज का जेरोक्स लिया और बहुत अच्छी से एक बॉक्स बनाई, एक गिफ्ट बॉक्स जैसा, जिसको खोलते ही ऐसा एक्सप्लोडिंग बॉक्स जैसा बाहर आ जाएगा और हम बचपन की फोटोज देख सकते हैं और बलून सब कुछ।
0: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा मेमोरेबल गिफ्ट था।
2: और मैंने एक पीपीटी बनाई दी थी
0: पीपीटी
2: एनिवर्सरी में।
0: और पापा की बर्थडे पर भी आपने कुछ स्पेशल किया था ना?
2: हाँ, मेरी बुआ ने इसमें

0: सारे फैमिली मेंबर्स अपने व्यूज को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे भैया एक म्यूजिक की जिसमें मेरी बुआ आती है और हम डांस करते हैं, और पापा के पापा म्यूजिक के लिए मैं डांस करती हूँ। ऐसा एक एक रिश्तेदार के रिलेशनशिप को एक एक डांस। मैंने बहुत सारे पोएम्स भी लिखती हूँ मेरे पापा के लिए।
1: आप बहुत सारी पोएम्स लिखते हो अपने पापा के लिए? अरे वाह। और आकाश?
2: हाँ दीदी।
1: आप अपने घर पे सबको बताते हो कि आप उनसे कितना प्यार करते हो?
2: दीदी वो एक्सप्रेस करने की चीज नहीं होती, उनको खुद ही पता चल जाता है कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। जब हम किसी की केयर करेंगे तो उनको खुद ही पता चल जाएगा कि ये मुझसे कितना प्यार करता है।
1: बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि प्यार बताने से ज्यादा जताने की चीज है। लेकिन फिर भी कभी कभी हमें अपने मम्मी पापा और सबको बताना चाहिए कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, है ना?
2: करता तो हूँ, लेकिन पापा को बताने की हिम्मत नहीं होती।
3: हमारे पापा भी गब्बर सिंह हैं।
2: और क्या?
0: गब्बर सिंह तो
4: आतंक के दूसरे नाम।
1: पापा की बर्थडे हो या ऐसा कोई ओकेजन हो तो आप उन्हें छोटा सा कार्ड बना के दे सकते हो या ऐसा कुछ कर सकते हो जो उन्हें स्पेशल फील हो।
2: हाँ ये भी बात दीदी आपने सही बोली
1: है ना। और कभी कभी बोल नहीं पाओ तो उन्हें लिख के भी दे सकते हो।
2: हाँ दीदी, जैसे मैंने अपने पापा मम्मी की एनिवर्सरी पे उनको एक कार्ड बना के दिया था। उस दिन जब मैं स्कूल से आया तो घर पे पापा मम्मी थे नहीं, मतलब मैं बहुत परेशान हो गया कि पापा मम्मी कहाँ गए, और दादी भी कुछ बोल नहीं रही है मेरे को। जब शाम को 7 बजे आए पापा मम्मी घूम के, तब मेरा ऐसे ही मन हुआ, सुबह मम्मी को मैंने बोला ही था, हैप्पी एनिवर्सरी बोल दिया था, तो मेरा मन किया चलो कार्ड बनाते हैं। तो मैंने कार्ड बनाना स्टार्ट किया, टाइम भी कम था, लेकिन मेरे फ्रेंड्स ने मेरी बहुत मदद की कार्ड्स बनाने में, और मतलब मैंने करीब 3 कार्ड्स बनाए थे मम्मी और पापा के लिए। एक में मैंने पापा के लिए पोयम लिखी थी, एक में मम्मी के लिए, और एक में पापा मम्मी और मेरी फीलिंग्स लिखी थी कार्ड में।
1: अरे वाह, और ये तो सबसे अच्छा तोहफा होता है जब हम अपनी फीलिंग्स लिख के मम्मी पापा को देते हैं। और सैंडी?
4: नहीं दीदी मैं नहीं बताता।
1: नहीं बताते? क्यों नहीं बताते?
4: क्योंकि मैं डेली ना जब मम्मी पापा शाम को बैठते हैं तो मैं उनसे बातें करता हूँ आधे घंटे तक, तो उन्हें पता चल जाता है कि हाँ मैं उनकी कितनी केयर करता हूँ।
1: आप उनसे बातें करते हो? हाँ ये बात तो बहुत अच्छी है, हम डेली मम्मी पापा से बातें करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है। और पंकज आप?
5: हाँ दीदी, मैं अपने मम्मी पापा को सीधे सीधे बता देता हूँ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी मम्मी जब भी मुझे कहती है कि आजकल के बच्चों के एग्जाम्पल्स देती है मेरी मम्मी की उसके बेटे ने ऐसा किया, तो मैं उन्हें साफ साफ बता देता हूँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा।
4: और हाँ दीदी, ऐसा कुछ कभी मेरे साथ ही होता है तो मैं मम्मी को गले लगा लेता हूँ और बोलता हूँ मम्मी मैं भी ऐसा कुछ नहीं करूँगा।
0: पर दीदी आपको पता है मेरी मम्मी को जब भी वो काम करती है, वर्क फ्रॉम होम करती है, तो मैं उनके लिए नींबू पानी बनाती हूँ और उनको बहुत पसंद है, और 2 ग्लास।
1: अरे बात। तो आज हम बात कर रहे थे फैमिली यानी परिवार के बारे में। तो लास्ट में ये स्पेशल वाला एपिसोड खत्म करने से पहले क्या कोई एक मैसेज है जो आप अपने फैमिली मेंबर्स को देना चाहते हो?
0: थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑल एंड आई लव यू ऑल।
2: अगर मेरे पापा अभी मेरे को सुन रहे हैं तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, पापा इतने साल हो गए आप मेरे को कहीं घुमाने नहीं लेके गए, प्लीज हाथ जोड़ता हूँ इस बार मेरे को हाजी अली लेके जाओ।
1: और पंकज आप कुछ कहना चाहते हो?
5: मैं अपने मम्मी पापा से ये कहना चाहता हूँ कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उन्हें कभी भी अलग नहीं देखना चाहता, मैं हम अपने मम्मी पापा और मुझे हमेशा एक साथ तीनों को देखना चाहता हूँ।
1: और सैंडी?
3: मैं अपने मम्मी पापा से कहना चाहूँगा कि मम्मी पापा आप लोग और कितना दिन जी सकते हो, मुझसे बहुत ज्यादा दिन जियो, मेरी उम्र आप लोगों को लग जाए, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत उम्र तक देखना चाहता हूँ।
1: ये बहुत प्यारी प्यारी बातें आप लोगों ने की जो आप लोग अपने मम्मी पापा से कहना चाहते हैं। आज की ये बातचीत हम यही खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे फिर से कुछ नई बातों के साथ और नई बातों का पिटारा खोलने के लिए बच्चों की दुनिया रेडियो मधुबन 90.4 FM पर सुनते रहिए।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: कभी खोने का हक।
1: क्या आपको पता है कि भारत में 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, महाभारत, रामायण और गीता जैसे दर्शन शास्त्र तो हैं ही, साथ ही साथ अगम शास्त्र, त्रिपिटका, गुरु ग्रंथ साहिब, धम्मपद जैसे हर धर्म के शास्त्र होने से संपूर्ण ज्ञान का कोष है। ऐसा बताया जाता है कि जब आक्रमणकारियों ने नालंदा के पुस्तकालय में आग लगाई, तब वहाँ इतने ग्रंथ मौजूद थे कि वहाँ लगाई हुई आग कई महीनों तक ठंडी नहीं हुई थी। भारत की विशेषताओं को करते रहिए सलाम।
2: पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। जय हिंद,
1: जय भारत।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन, वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दें या भरते जाएं? घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अरे हाँ, ये कौन सा महीना है?
1: जनवरी। ऋतु सुहानी झूमती है।
0: ये पुलिस क्यों घूमती है?
1: अरे बाबा, तुम्हें नहीं किसी चोर को ढूंढती है।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
1: कुछ लोग होते हैं दोस्तों, जो अपने जीवन से न केवल अपने आसपास के लोगों के जीवन में उजाला लाते हैं, लेकिन पूरे देश का नाम पूरे जहान में रोशन कर जाते हैं। ज्योतिर्गमय की फाउंडर टिफनी ब्रार एक ऐसी ही मिसाल है। यशस्वी भारत की एक ऐसी यशस्वी बेटी है, जिन्होंने अपने जीवन से केवल अपने माँ बाप, परिजनों का, अपने आसपास के लोगों का ही नहीं, लेकिन समूचे भारत देश का नाम गौरवान्वित किया है। टिफनी जी, दोबारा हमारे स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले एपिसोड में आपने बताया कि भारत को भारत कौन सी बातें बनाती है। आज आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि भारत को यशस्वी बनने से रोकने वाली बातें कौन सी है, कौन सी वो बातें हैं जिन पे सुधार किया जा सकता है।
2: अनेकता में एकता कहा जाता है हिंदी में, एंड व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ इंडिया इज दैट हम ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, हम डिसेबल फ्रेंडली नहीं है, हम पंचुअल नहीं है, हम काफी सारी चीजों में डिसऑर्गेनाइज्ड। जैसे कि अगर आपने मुझसे कहा कि 10 o'clock को इंटरव्यू में आना है, मुझे आना ही है, लेकिन अगर आपने ये इंटरव्यू 10 o'clock के लिए शेड्यूल किया और मैं 11 o'clock को आऊँ, तो आपका एक घंटा जाया हो जाएगा, आपका ये एक घंटा जो है वेस्ट हो जाएगा, आप इतने में कोई और काम कर सकते थे। लेकिन हमारे इंडिया में कोई किसी का वक्त का इम्पोर्टेंस नहीं देता। अभी मिनिस्टर आ रहे हैं फोन में से, हम सब खड़े होते हैं, मिनिस्टर आ रहे हैं, रोड ब्लॉक्स होती है, ये होता है, वो होता है, लेकिन मिनिस्टर एक घंटे लेट आते हैं, लेकिन और कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है। एट द सेम टाइम एक्सेसिबिलिटी के लिए तो हम इतने सारे हम लड़ चुके हैं, हमारे रोड्स में अभी तक होल्स है, अभी तक छोटे छोटे पॉट होल्स है, अभी तक स्टोन्स और स्लैब्स है, अभी तक पीपल आर स्टिल स्पिटिंग ऑन द रोड। अब्रॉड में ऐसा नहीं करते, पीपल आर स्टिल थ्रोइंग देयर लिटर हियर एंड देयर, लेकिन बाहर की कंट्रीज में एनवायरमेंट को भगवान माना जाता है। एक्सेसिबिलिटी होती है कि हम जैसे विकलांग लोग अपने आप चल सके, हम जैसे विकलांग लोग बिना किसी के सहारे रोड क्रॉस कर सके, व्हीलचेयर यूजर्स आसानी से जा सके, लेकिन हमारे इंडियन रोड्स में तो ये हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल नामुमकिन है, ये बिल्कुल एक ड्रीम है जो भगवान जाने कब सही होगा, कब सफल होगा, ये हमारा पूरा सपना कब होगा कि हमारे पूरे रोड्स बाहर के कंट्रीज के जैसे एक्सेसिबल हो, हमारे पीपल थोड़े डिसेबल फ्रेंडली हो, थोड़े पंचुअल हो, थोड़े ऑर्गेनाइज हो। अभी भी जब हम पुरस्कार लेने गए थे, बहुत सारी चीजें डिसऑर्गेनाइज थे, बहुत सारी चीजें वक्त पे नहीं हुआ, एंड इट्स द प्रेसिडेंट अवार्ड, बहुत सारी चीजें वक्त पे हुआ, लेकिन बहुत सारी चीजें वक्त पे नहीं हुआ, क्योंकि 2 साल का था कोविड के दौरान, दे वर गिविंग द प्राइज आफ्टर 2 years, तो देयर वर लॉट ऑफ लैग्स। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा क्यों होता है, क्यों लैग होते हैं, और कंट्रीज के लोग हमें बोलते हैं कि ओके दिस इज इंडिया, दैट्स व्हाई यू पीपल आर बिहाइंड। ये हमें चेंज करना चाहिए, हमारे कंट्री का ये स्टीरियोटाइप हमें बिल्कुल चेंज करना चाहिए।
1: एक्चुअली इसमें मैं यहाँ से 2 बातें लेना चाहूंगा। एक जो आपने बोला ना कि कब चेंज होगा भारत की ये दशा, या ये जो ड्रॉबैक्स है भारत की, मैं समझता हूँ इसके लिए हम सबको मिल करके ठानना होगा कि जो आपने पहली बात कही कि हमारे देश की संस्कृति क्या कहती है, हमारे देश की संस्कृति कितनी स्ट्रांग है, कितनी पावरफुल है, जब हमें उसका अच्छा एक भान रहेगा कि भाई मैं ऐसे देश को बिलोंग करता हूँ, और मेरे पर्सनल लाइफ से भी मेरे कंट्री का इमेज जो है देश दुनिया में जा रहा है, तब हम इसको चेंज करेंगे। और दूसरा जो आपने बात मैं इसमें से लेना चाहूंगा कि आपकी इस प्रेरणा से मैं अपने श्रोता साथियों के साथ यही शेयर करना चाहूंगा कि क्यों नहीं हम एक बात आज के डिस्कशन से ले लें कि हम पंक्चुअल हो जाएं, हम समय के पाबंद हो जाएं। जैसे मैं अपने समय को कीमती मानता हूं, ऐसे सामने वाले का समय भी उसके लिए बहुत कीमती है, और एक दूसरे के समय का अगर हम मान रखेंगे तब जाकर के देश आगे बढ़ेगा। तो टिफनी जी, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा, मतलब कह तो इसको रैपिड फायर कह सकते हैं, जिसमें कि मैं आपको सवाल पूछूंगा और आपको एक शब्द में या एक जुमले या एक वाक्य में उसका जवाब देना होगा। सो आर यू रेडी फॉर दैट? सो आपके लिए शांति क्या है?
2: मेरे लिए शांति है साइलेंस, शांति मेरे लिए विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट। एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, झगड़ा, ऊंचे आवाजें, गालियाँ, डिफरेंस इन ओपिनियन भी अगर करना चाहो तो शांति से करिए। तो मेरे लिए शांति है द साउंड ऑफ बर्ड्स, जो ये चिड़िया के वॉइस होते हैं।

0: जो ये हवा का धुन होता है, जो नेचर की आवाज है, विंड चाइम्स, बर्ड्स, विंड, सी ब्रीज, ये सब मेरे लिए छा।
1: आपका जवाब इतना इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है आप एक बहुत अच्छी पोएट भी बन सकती हैं। Have you tried writing something?
0: I've tried writing short stories, women के struggles के ऊपर कई short stories, एक दो short stories तो लिखे हैं, लेकिन मैंने actually publish नहीं किया, मैंने ऐसे लिखे word document में save करके रखा है।
1: सही टाइम है कि हमारे श्रोता और हम जरूर चाहेंगे कि आप कभी भी हमारे साथ अपने stories, अपने poetry share जरूर करें, हमें इसका बहुत इंतजार रहेगा। दूसरा सवाल है आपके लिए, प्यार क्या है?
0: प्यार भी ये है कि अंडरस्टैंडिंग समवन अनकंडीशनली, जैसे वो अपने माँ हो, वो अपने भाई हो, वो कोई भी हो, लविंग अनएक्सपेक्टेंटली और अनकंडीशनली। कि जैसे हम किसी से प्यार करें लेकिन हम उनसे कुछ वापस एक्सपेक्ट ना करें। अब जैसे कि अगर मैं आपको 100 रुपए दूं तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करना, क्योंकि ओके मेरे शांतनु भैया है, उन्होंने मुझसे 100 रुपए मांगा है तो मैं दे दूंगी, लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगी कि आप मुझे 10 रुपए इंटरेस्ट दे, या आप मुझे ये 100 रुपए के बजाय 200 रुपए दे, या आप मुझे एक हफ्ते में ये 100 रुपए लौटा दे। दैट इज नॉट लव। या मैं आपके लिए कुछ कर दूं और मैं कुछ एक्सपेक्ट करूं आपसे, तो दैट इज नॉट लव। लव इज व्हेन यू डू समथिंग फॉर समवन अनकंडीशनली। लव इज शोन थ्रू एक्शंस, इट्स नॉट शोन थ्रू ओनली वर्ड्स। लव इज शोन थ्रू द एक्शंस, the way you care for someone, the things you do for someone, the way you hold that someone, the regard, that is love. The way you touch somebody's heart, किसी के दिल को आप छू सकते हैं अपने words से, अपने inspiration से, अपने empathy से, अपने energy से, आप किसी को छू सकते हैं, उनके लिए कुछ कर सकते हैं, उनकी जिंदगी में आप परिवर्तन ला सके, तो that is true love.
1: बहुत सुंदर। कर्तव्य क्या है? What is duty?
0: Duty is to do what you can for the society, to do your duty for the society, for the environment, अपना environment clean रखना, अपने काम अच्छे तरीके से ईमानदारी से करना, जो भी आप काम करते हैं ईमानदारी से करना। अभी जैसे कि कहा जाता है कि बाइबल में कहा है कि अपने मास्टर और स्लेव, बस खाली मास्टर देखने के लिए, द सर्वेंट शुड नॉट जस्ट डू हिज वर्क बिकॉज जस्ट टू गेन द फेवर ऑफ द मास्टर, खाली मास्टर का वो तारीफ पाने के लिए अपना काम ना करें, लेकिन जब आपका मास्टर आपको ना भी देख रहा होता तो अपना काम ईमानदारी से करें।
1: मतलब किसी को खुश करने के लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है,
0: दिखाने के लिए नहीं करना, लेकिन अपने दिल से करिएगा, ईमानदारी से करिएगा अपना काम,
1: संतुष्टि के लिए अपनी ईमानदारी से हमें चीज को करनी है। बहुत अच्छा बोला। तब ये है कि जो हमें करना है वो हमें करते रहना ईमानदारी से। इसके बाद के जो 4 प्रश्न हैं उसका जवाब मुझे एक शब्द में चाहिए होगा। इज इट वेरी चैलेंजिंग फॉर यू?
0: आई विल ट्राई।
1: आई एम नो यू कैन विन इट। आप बहुत अच्छा जवाब देंगे। तो पहला सवाल, आपका फेवरेट सॉन्ग?
0: आई नो आई डोंट हैव अ फेवरेट सॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं है।
1: ओके,
0: बट आई लव म्यूजिक, म्यूजिक बहुत पसंद है मुझे।
1: किस तरीके का म्यूजिक पसंद करते हैं आप?
0: बहुत स्लो म्यूजिक, ऐसे ओल्ड सॉन्ग्स पसंद है मुझे, लता मंगेशकर टाइप गाने बहुत पसंद है, एंड बहुत सारे मीनिंगफुल सॉन्ग्स पसंद है मुझे, हर लैंग्वेज के सॉन्ग्स, तमिल, मलयालम, हिंदी, इंग्लिश, नेपाली, मराठी, सब सॉन्ग्स, सब लैंग्वेजेस के अपने, एंड इंस्ट्रूमेंट्स बहुत पसंद है मुझे, जैसे फ्लूट, जैसे सितार, हारमोनियम, इंडियन जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तबला, क्लासिकल, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स, वायलिन, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स का कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है मुझे।
1: और अगर एक कोई कहानी आपके बचपन में जो आपने सुनी हो, पंचतंत्र में या कोई भी फोकलोर हो, या कोई भी ऐसी कहानी जो बचपन में आपने सुनी हो और जो आपको बहुत इंस्पायर करती हो, कौन सी है वो कहानी?
0: आई वुड से इट्स पंचतंत्र की तो कहानी नहीं है, लेकिन एक कहानी को मैंने सुनी, वो सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटेड है, द गूस एंड द गोल्डन एग। वो कहानी ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है कि यू नो ग्रीडी नहीं बनना चाहिए हमें, क्योंकि वो गोल्डन एग्स के लिए वो इतने ये करते हैं, लाइक दे आई मीन दे किल दैट बर्ड हु लेज द गोल्डन एग्स। वो लोग सोचते हैं कि अच्छा अभी ये बर्ड को किल करने से ये गोल्ड पूरा उसके बदन से हम निकाल सकते हैं, सो दैट इज ओवर ग्रीड, आई मीन दैट इज ओवर एक्सपेक्टेशन। लेकिन अगर वो बर्ड को किल ना करके उस बर्ड को अच्छे से पालन पोषण करते तो उनको डेली वो गोल्डन एग मिलता ही रहता। लेकिन बर्ड ने यू नो बिकॉज दे किल दैट बर्ड, जब वो देख रहे थे कि गोल्ड है कि नहीं बर्ड के अंदर, तो द बर्ड वॉज एन ऑर्डनरी बर्ड जस्ट लाइक एवरी अदर बर्ड। सो यू नो
1: तो आई थिंक लोग जो है वो हमारे धैर्य और हमारे बुद्धि को खा जाता है, और उसके बाद हमारे पास जो रह जाता है वो है सिर्फ पछतावा। सो दैट वाज वेरी वेरी गुड स्टोरी टू ब्रॉट अस बैक। आखिरी 2 सवाल एक एक शब्द में, भारत क्या है?
0: ये तो आपने

0: पहले भी पूछ चुके हैं मुझसे, तो अकॉर्डिंग टू मी एज अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, इंडिया इज अ कंट्री विद अ वास्ट कल्चरल हेरिटेज, यही कहना चाहूंगी, हमारा बड़ा संस्कार अनेकता में एकता।
1: तो एक शब्द में अगर उसको कहना हो तो अनेकता में एकता, या
0: अनेकता में एकता, या एक्जेक्टली।
1: टिफनी क्या है या टिफनी कौन है, एक शब्द में या एक फ्रेज में?
0: I don't think I can answer this question. मुझे पता नहीं है, मैं हूँ, मैं एक इंसान हूँ जिसको भगवान ने लेके आया है, he's brought me for a purpose and I hope I can fulfill that purpose and go back to God.
1: So इस सवाल का जवाब हम और हमारे श्रोता आपको देते हैं, टिफनी प्रेरणा है। So you are an inspiration and आपसे कई लोग सीख रहे हैं, आपसे कई लोग बल पा रहे हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। So थैंक यू सो मच फॉर वॉट यू आर एंड वॉट यू डू, आप जो हैं, आप जो कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं।
0: थैंक यू सो मच।
1: एंड मैं आपको एक मौका देना चाहूंगा कि आप अपने श्रोता साथियों को एक मैसेज दे सकते हैं, ज्योतिर्गमय के बारे में बता सकते हैं, हाउ दे कैन कनेक्ट विद यू, यू आर फ्री टू शेयर सम इन्फॉर्मेशन विद देम।
0: सो आप ज्योतिर्गमय के सोशल मीडिया हैंडल्स के द्वारा आप कनेक्ट कर सकते हैं। ज्योतिर्गमय का फेसबुक पेज है, वेबसाइट है ज्योतिर्गमय.org, और अगर आप लोगों को किसी को मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना हो तो आप ब्रह्मा कुमारी के लोगों के द्वारा हमें कनेक्ट कर सकते हैं, शंकरिया के द्वारा हमें, ही वुड बी हैप्पी टू पास ऑन माय डिटेल्स। और मेरी ईमेल आईडी tiffanybrar@gmail.com है, किसी को मुझे ऑर्गेनाइजेशन या मुझे भी आप किसी तरह से भी सपोर्ट करना चाहेंगे तो आप सपोर्ट कर सकते हो, नॉट ओनली विद मनी बट विद वर्ड्स, विद गुड वर्ड्स, विद एनकरेजमेंट, विद लव।
1: थैंक यू सो मच टिफनी जी, मतलब आज का ये दिन हम सभी साथियों के लिए, जो भी यहाँ सुन रहे हैं, सबके लिए बहुत बहुत खास है क्योंकि आज आप हम सबके साथ हैं। तो आपको बहुत बहुत थैंक्स दोबारा, और ऐसे ही हेल्दी हैप्पी और एक्टिव रहिएगा, और आप अपने साथियों को इसी प्रकार से मोटिवेट करते रहिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपके साथ दोबारा फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच,
0: गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।
1: तो साथियों, आज के इस एपिसोड में टिफनी जी ने भारत का जो आयाम हमारे सामने रखा वो था कि भारत अर्थात विविधता। एक गुलदस्ते को जब हम देखते हैं तो उसमें कई रंग होते हैं, कई खुशबू होते हैं, और वो गुलदस्ता हमारा देश है जहाँ मैं, आप, हम सब अलग अलग रंग बिखेर रहे हैं, अलग अलग खुशबू बिखेर रहे हैं। तो अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी, जुड़े रहिएगा हमारे साथ सुनने के लिए 90.4 FM रेडियो मधुबन से मैं आरजे शांतनु आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।
2: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
3: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स, जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूं विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है, नहीं मुझे तो इसे गुस्सा करना ही है, कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, मैं हूँ पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए

0: 呢，一个人。
1: 这里给我们的海椒啊，三个买猪包还什么？

0: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंद रहा, आनंद लुटा।
1: मनन से मनोबल तक, आस्था से अस्तित्व तक, पुणेरी आवाज 107.8, खुश रहो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप वो उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर। ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड एंड इट कम्स बैक टू माई माइंड लेटर ऑन। शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब माई माइंड, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका हम सफर RJ संजय। स्वागत है आप सभी का हमारी श्रृंखला श्री कृष्ण की 16 कलाएं के 8वें अध्याय में। हम जानेंगे अलंकार माधुरी, वह कला जिसमें श्री कृष्ण के अलंकार, उनके आभूषण और श्रृंगार, भक्ति और सौंदर्य का अद्भुत संगम बन जाते हैं। तो दोस्तों, सुनते हैं एक श्री कृष्ण का प्यारा गीत।

दोस्तों, जय श्री कृष्णा। अलंकार माधुरी का परिचय होना हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। कृष्ण का श्रृंगार केवल बाहरी सजावट नहीं था, बल्कि उनकी दिव्यता का प्रतीक था। उनके मुकुट में मोर पंख, गले में वनमाला और हाथों में कंगन, ये सब उनके प्रेम और करुणा की झलक दिखाते थे। उनके अलंकारों की मधुरता ने वृंदावन को सौंदर्य और भक्ति से भर दिया था। तो दोस्तों, सुनते हैं इसी के साथ एक भक्ति।

जय श्री कृष्ण। दोस्तों, भागवत पुराण में वर्णन आता है कि जब कृष्ण गोपियों के बीच आते तो उनके अलंकारों की चमक से वातावरण आलोकित हो जाता। गोपियाँ उनके वनमाला और मोर पंखों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती। राधा के लिए तो कृष्ण का हर अलंकार प्रेम का प्रतीक था। मोर पंख उनके हृदय की शोभा, वनमाला उनके प्रेम की गहराई थी। तो दोस्तों, इस गहराई के साथ सुनते हैं हम एक सुंदर और प्यारा गीत।

जय श्री कृष्ण दोस्तों, अलंकार माधुरी हमें ये सिखाती है कि जीवन के अलंकार केवल बाहरी सजावट नहीं बल्कि आंतरिक गुणों का प्रतिबिंब है। जब हम अपने जीवन को प्रेम, करुणा और भक्ति से सजाते हैं तो वही सच्चा अलंकार बन जाता है। कृष्ण के अलंकार हमें ये संदेश देते हैं कि सौंदर्य का मूल स्रोत ईश्वर का प्रेम है। तो दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। आप सुन रहे हैं रेडियो बुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, माल्य नुपुर हरे न लस्य दान माले हरि, अर्थात हरि वनमाला हर और नुपुर से अलंकृत होकर अद्भुत शोभा बाते है। यह श्लोक हमें बताता है कि ईश्वर के अलंकार केवल आभूषण नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। तो दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारा संगीत।

नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। यह थी आखिरी कला अलंकार माधुरी। यह कला हमें सिखाती है कि जीवन का सच्चा अलंकार प्रेम और भक्ति है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे श्री कृष्ण की नवी कला चित्र माधुरी, यानी उनके चित्रों और रूप की मधुरता। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

हम दिल का साज बजाते हैं, दुनिया के होश उड़ाते हैं। हम सात सुरों के सागर हैं, हर महफिल में लहराते हैं, हर महफिल में।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड में से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ, अगले साल ठंड छह महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं छह महीने बीमार रही। उसके दो साल के बाद इतनी ठंड आई और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके चार साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट, एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियां।

ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर स्वागत करते हैं आप सबका। हैप्पीनेस इंडेक्स की इस श्रृंखला में बहुत सी बातें सामने आई हैं और अगर पिछली कड़ी को देखें तो याद आता है कि हमने बात की थी कि क्या एंटर

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। हैप्पीनेस इंडेक्स को देखते हुए इन दिनों हम अपनी श्रृंखला पर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सी बातें समझ में आई और बहुत से सवाल अभी भी बचे हैं, क्योंकि हम पूरे मैकेनिज्म को समझ रहे हैं। हम वो खुशी जिसके लिए हम हर कुछ कर रहे होते हैं उसे क्रिएट कैसे करते हैं, और अगर हम देखें तो जवाब एक छोटा सा आ रहा है कि हम खुद क्रिएट करते हैं। सिचुएशन कुछ भी हो रही हो, लोग कुछ भी कर रहे हो, हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। अब ये अगर इतना आसान है तो फिर हम अभी तक क्यों नहीं कर पा रहे थे। इसी बहुत सी बातें हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी, जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज भी इसमें आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। अगर पिछली कड़ी को देखते हैं, पूरा मैकेनिज्म हम ले रहे हैं कि अभी तक एक्चुअली देखा जाए मेरा पूरा जीवन, हम विश्व में भी देखते हैं हर कोई काम कर रहा होता है खुशी के लिए, मतलब हर चीज के लिए, बड़ी से बड़ी चीज हो जाती है बेसिकली, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, यू नो, एंड आई कैन डू सो मच, आई कैन डू सो मच फॉर एवरीवन एल्स आल्सो बिकॉज इट वाज गिविंग मी हैप्पीनेस। लेकिन आपसे जब हमने इस पूरी श्रृंखला में बात की है तो एक बात जो सामने आती है कि ये तो मेरी अपनी क्रिएशन है। अगर ये इतना ही आसान है, क्योंकि बहुत से सवाल अब आने शुरू हो गए हैं हमारे पास लोगों के, अगर ये मेरी अपनी ही क्रिएशन है सो वाई आई हैव बीन ट्राइंग सो मच।
1: Like you said, I can do so much for happiness. You don't have to do anything for happiness. You have to be happy. See, doing or being, ये दो चीजें हैं। एक है being, मतलब who I am, that being inside, and doing is what I am doing outside. तो एक है being happy, and एक है doing something.

0: रखें फॉर गेटिंग हैप्पीनेस. तो एक है मैं हूं खुश और दूसरा है मैं ये कर रही हूं ताकि मुझे खुशी मिले. तो कहीं मुझे अंदर वो एक्सपीरियंस नहीं हो रहा था तो इसलिए मैंने उसको बाहर ढूंढना शुरू किया. सिंपल चीज जो एक सबसे पहला जो बिलीफ सिस्टम जो हमने लिया कि हैप्पीनेस को हम सारा दिन दिनचर्या में अगर देखते रहे तो हम हैप्पीनेस को फ्यूचर में ढूंढते रहे. यू नो हम अपनी वोकैबुलरी को भी अगर देखें ये होगा
1: तो मैं खुश
0: तो खुश होंगी. यू नो एक स्टूडेंट लाइफ से भी इवन आज मुड़कर हम कहते हैं कि स्टूडेंट लाइफ वॉज द बेस्ट लाइफ लेकिन व्हेन वी वर अ स्टूडेंट या हम जो भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं हम कहेंगे जब ये खत्म हो जाएगा ना स्कूलिंग खत्म हो जाएगी
1: अर्निंग ना व्हेन आई विल बी इंडिपेंडेंट या मैं जब कॉलेज जाऊंगी ना तब आई विल नो.
0: सो व्हाइल दो स्कूल ईयर्स मैं ये कहती रहूंगी कि जब ये स्कूलिंग खत्म होगी ना देन आई विल बी हैप्पी. जैसे ही मैंने ये कहा कि जब ये होगा देन आई विल बी हैप्पी विच मीन्स कि अभी
1: I'm unhappy.
0: अभी आई एम नॉट हैप्पी बट ये होगा तो देन आई विल बी हैप्पी. तो फिर चलो स्कूलिंग खत्म हुई फिर हमारी एजुकेशन खत्म हुई फिर हम प्रोफेशन में आ गए फिर हमने सोचा व्हेन आई गेट अ पार्टनर ना व्हेन आई गेट इनटू अ रिलेशनशिप एंड फिर वो देन आई विल बी हैप्पी. फिर वो सर्च स्टार्टेड फॉर दैट. फिर वो रिश्ता हुआ देन आई से हमारे जब फैमिली हो जाएगी ना देन आई विल बी हैप्पी. तो एवरी टाइम वो हैप्पीनेस पोस्टपोन ही होती रही कि कब ये होगा.
1: और आई थिंक जब एक स्टेज आती है कि जब नहीं हो रहा होता और लगता है कि आगे सब और कुछ नहीं हो पाना तो फिर तब पीछे देखना शुरू करते हैं देन सेट कि वी लॉस्ट ऑन एवरीथिंग.
0: तब हम कहेंगे वो वाले जो दिन थे ना
1: वो अच्छे थे.
0: सो हियर आई एम इन द प्रेजेंट लेकिन वेयर एम आई लुकिंग फॉर हैप्पीनेस. या तो जो होने वाला है या फिर जो हो गया. अगर मैं यहां खड़े होकर कह रही हूं कि जो हो गया दैट वॉज वेरी नाइस दैट वॉज वेन आई वॉज हैप्पी बट दैट टाइम आई डेंट फील दैट. क्यों? क्योंकि दैट टाइम आई वॉज सिटिंग विद द थॉट कि जब ये होगा देन आई विल बी हैप्पी. तो प्रेजेंट में न रहकर हम हर मोमेंट में या तो बीते हुए पल के बारे में सोच रहे हैं या फिर आने वाले पल में. इसको भी जब कई बार हम ये सुनते तो हमें लगता नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है. आई डोंट थिंक बट इट इज लाइक दैट. एक दिन अगेन यू हैव टू लुक एट योर थॉट्स. आपकी हर थॉट को अगर आप चेक करें वो थॉट या तो बीती हुई बात से रिलेटेड होती है या फिर आने वाली चीज पर होती है. तो आई कीप ऑन पोस्टपोनिंग माई हैप्पीनेस एंड देन डिपेंडेड ऑन इवेंट कुछ होगा तब खुशी मिलेगी लोग कुछ करेंगे तो खुशी मिलेगी. तो हैप्पीनेस वॉज ऑलवेज गेटिंग पोस्टपोन्ड. इन द प्रोसेस मेरा एक एक पल बीतता गया हर पल में सिर्फ ये कहते हुए कि अगले पल वो खुशी आने वाली है जब कुछ ऐसा होगा. कंडीशन भी उस पर भी लग गई थी कि जब ऐसा होगा तब मुझे खुशी मिलेगी. अब जैसे ही हमारी हैप्पीनेस किसी और चीज पर डिपेंडेंट हो जाती है यू नो वी सॉ इन द लास्ट फ्यू एपिसोड्स कि हमारी खुशी बहुत सारी बातों पर डिपेंडेंट है. अचीवमेंट्स पर डिपेंडेंट है हम जो काम करते हैं उस पर डिपेंड लोगों पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है हमारे फिजिकल साधनों पर डिपेंडेंट है. तो डिपेंडेंट है. एक सेकेंड अगर हम सोचे इस बात पर कि अगर मेरी कोई चीज किसी पर डिपेंडेंट है तो मेरा अनुभव कैसा होगा. हाउ विल आई फील. कैन आई बी हैप्पी व्हेन देयर इज अ डिपेंडेंसी. जैसे
1: आई बी वेरी फियरफुल.
0: एक्सैक्टली दैट्स द पॉइंट. दिस इज द क्रक्स. जिसको ये समझ में आ गया ना उसको ये समझ में आ जाएगा कि जब तक डिपेंडेंसी है तब तक खुशी नहीं हो सकती.
1: क्योंकि फियर और हैप्पीनेस कांट बी.
0: फियर एंड हैप्पीनेस कैन नॉट बी टुगेदर. डर में है तो खुश कैसे हो सकते हैं. तो जैसे ही मेरी खुशी क्योंकि आज मेरी खुशी बहुत सारी चीजों पर लोगों पर तो जितनी भी चीजों पर वो डिपेंडेंट है मैं हर चीज के लिए डर में रहूंगी. लेट्स से मेरी हैप्पीनेस आप पर डिपेंडेंट है फॉर एग्जांपल तो मैं हमेशा डर में रहूंगी कि ये ठीक है ये मेरे से नाराज तो नहीं हुए ये खुश है ना ये संतुष्ट है ना मैं इनके लिए क्या. फियर इनसिक्योरिटी. जहां डिपेंडेंसी है वहां इनसिक्योरिटी है. अगर मेरी खुशी साधनों पर डिपेंडेंट है सारा दिन क्या है और कच्चे कर जाऊं. फियर है कहीं इसको कुछ हो ना जाए कहीं मेरे धन को कुछ ना हो जाए कहीं. अगर मेरी खुशी इस पर डिपेंडेंट है कि मेरे बॉस को मेरा काम पसंद है कि नहीं तो सारा दिन मेरा फोकस किस पर रहेगा.
1: ऑफकोर्स ये कि मेरा बॉस खुश रहे.
0: सी इट्स ऑलवेज फियर. तो जहां फियर है वहां स्टेबिलिटी. क्योंकि जैसे ही फियर क्रिएट हुआ तो कौन सी क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्रिएट होंगे. इट विल बी ऑलवेज नेगेटिव ऑलवेज वेस्ट. द ओनली रीजन कि इतना कुछ करते हुए इतनी मेहनत करते हुए हम खुश नहीं है क्योंकि हमने वो डिपेंडेंसी की इक्वेशन अपने लाइफ में सेट कर ली है. इन चीजों पर डिपेंडेंट है और डिपेंडेंसी मीन्स फियर. डिपेंडेंसी कैन नेवर बी

0: स्टेबिलिटी. डिपेंडेंसी मीन्स फियर. जैसे जैसे आप एक एक चीज से अपनी डिपेंडेंसी को धीरे धीरे हटाते जाओ, एक दिन के लिए सिर्फ हटाकर देखो. सपोज मैं एक दिन के लिए अपने आप को कहूं मेरी खुशी इन पर डिपेंडेंट नहीं है. नाउ व्हेन आई कम इनटू इंटरेक्शन विद यू, हाउ विल आई बी?
1: यू विल बी अ स्ट्रांग पर्सन. यू विल नॉट बी अफ्रेड एक्चुअली कि मेरा क्या रिएक्शन होने वाला है.
0: एंड देन व्हाट विल दैट मेक मी?
1: You'll be stable.
0: I will be very natural. I will not be.
1: You'll not be artificial. Yes.
0: See, because meri khushi aap pe dependent nahi hai. I can just be natural. I can be the way I am. Mujhe aapko khush karna nahi hai.
1: Mujhe dar nahi hai. We hate to be dependent.
0: We hate to be dependent, but actually hum sara din dependent hi hai. परिस्थितियों पर, लोगों पर, वस्तुओं पर, किन किन चीजों पर अपने आप को डिपेंडेंट करके रखा है. इतनी चीजों पर डिपेंडेंट होंगे तो खुशी तो फिर वो जीवन सारा डर में बीतता है. क्योंकि डिपेंडेंसी मतलब ये नॉर्मल है किसी के साथ भी. अगर मेरी खुशी इस पर डिपेंडेंट है कि माय फिजिकल हेल्थ शुड बी ओके, तो हमेशा क्या बना रहेगा
1: कि मेरी ये कुछ होना चाहिए इसको. शिवानी, इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेटली मेरी डिपेंडेंसी उस पर अगर मुझे दिख रही थी, बट वॉज इट ओनली डिपेंडेंसी और माई केयर वॉज नेचुरल? क्या मैं उसके प्रति, अगर मैं ऐसे हो जाऊं कि फिर मुझे अपने आप को एक रहना है, तो मैं फिर उनके लिए जो मैं करती आ रही हूं किसी के लिए भी वो मैं नहीं करूंगी?
0: एग्जैक्टली. अब लेट्स लुक एट इट लाइक दिस. एक है जो मैं बाहर करती हूं और एक है जो मैं करते हुए अंदर फील करती हूं, जो मैं थॉट्स क्रिएट करती हूं. तो अब मैं बाहर आपके लिए बहुत कुछ कर रही हूं. आप आ रहे हैं, आपके लिए अच्छा खाना बन रहा है, आपके लिए सब कुछ, मैं सब कुछ कर रही हूं बाहर से, लेकिन मैं अंदर से कैसा फील कर रही हूं? अगर मैं डर में हूं तो कौन सी वाइब्रेशंस क्रिएट हो रही है? अगर मैं इनसिक्योर हूं कि मेरी हर छोटी बात पर आपको ये लगे आप, तो वो करते हुए आपको सब कुछ मैं कर दूंगी अच्छी तरह से, लेकिन वाइब्रेशन कौन सी क्रिएट होने वाली है? What is the energy of the interaction? ये बहुत important है. इसी पर आज हमारे fundamental जो relationships इतनी मेहनत करते हुए भी क्यों उतने strong नहीं है जितने होने चाहिए. हम बाहर से शायद पहले से कई गुना ज्यादा आज कर रहे हैं. You know, even if we look at parents and child, I feel कि when I was a child तो इतना कुछ नहीं होता था, मतलब आराम से ही बड़े हो रहे थे, आ रहे हैं घर खा रहे. आज तो पेरेंट्स इतना कुछ कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन करते हुए जो एनर्जी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर वो इनसे क्योंकि आज हम उनको प्लीज करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, ये बहुत डीप है. मतलब क्योंकि कहीं ना कहीं हम शायद उतना समय नहीं दे पाते. लेट्स से अगर एक हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, उनको अंदर एक गिल्ट है कि हम उतना टाइम नहीं दे पाते. जब मैं गिल्ट में घर आती हूँ तो मैं और ज्यादा ओवर करती हूँ कि मैं क्या करूं ताकि मैं आपको खुश कर सकूं, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैं कर रही हूं वो कहीं ना कहीं मुझे. अब उस प्रोसेस के अंदर मैं आपको आपकी गलतियों के लिए इन अ पेरेंट चाइल्ड मैं कुछ नहीं कहती कि चलो मैं जितनी देर आपसे मिली हूं ना आपकी हर बात मान लू, आपको जो चाहिए वो आपको दे दू, आपको किसी तरह मैं खुश कर दू, ताकि एक तो मेरा गिल्ट भी खत्म कर दो, आई फील गुड, एंड दूसरा आप भी कंप्लेन ना करें. सो वो रिलेशनशिप बहुत सुपरफिशियल हो गया फिर. और इसको करने से हुआ क्या कि मैं बच्चे का फायदा करने के बजाय
1: नुकसान
0: कर रही हूँ. बट इट ओनली ऑल हैपेंड, हमें पता नहीं चल रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं हर चीज जो कर रही हूँ वो बच्चे के अच्छे के लिए कर रही हूँ. इंटेंशन इज वेरी प्योर, अगेन इंटेंशन इज वेरी राइट, लेकिन क्योंकि वो गिल्ट की एनर्जी क्रिएट करके किया जा रहा है उसका रिजल्ट, तो वो क्या हो रहा है?
1: समवेयर वी नीड टू चेक आवर ओन इमोशंस, व्हाई वी आर डूइंग.
0: एब्सोल्युटली. तो अब जैसे आपके लिए कुछ करने की बात आई, सपोज अब मुझे ये लगे कि मेरी खुशी आप पर डिपेंडेंट नहीं है, आई कैन क्रिएट माय ओन हैप्पीनेस, मुझे आपको खुश करना नहीं है खुश रहने के लिए खुद, तो दिस विल नॉट मेक मी इनडिफरेंट, दिस विल मेक मी वेरी स्ट्रांग पहले. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, जब यहां एनर्जी अच्छी होगी, मेरे अंदर डर नहीं, इनसिक्योरिटी नहीं, तो मेरे अंदर क्या? स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी मीन्स हैप्पीनेस, लव, पीस. लव कुछ करने में नहीं होता है, लव होता है फर्स्ट आई फील लव. एंड इफ आई एम फीलिंग लव, क्या मैं आपको अच्छी तरह से खाना बना के नहीं खिलाऊंगी जब आप आओगे? ये तो बहुत छोटी चीज है, ये करना तो बहुत इजी है किसी के लिए भी. कोई आ रहा है, आप 10 चीजें बना दो खाने के लिए, लेकिन अंदर कौन सी क्वालिटी की एनर्जी क्रिएट की? तो जब अंदर राइट एनर्जी क्रिएट होगी, जो आउटर एक्शन है क्या वो कभी भी गलत हो सकता है? इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल.
1: तो इट मीन्स जब मैं इंडिफरेंट भी होती हूँ तो तब भी अंदर कोई हर्ट है.
0: हर्ट ही है ना, ऑफकोर्स हर्ट है.
1: या मतलब ये कि अगर मुझे ये फील करना है कि मुझे इनके ऊपर डिपेंड नहीं होना तो फिर मैं कम्प्लीटली यू नो
0: मैं इनडिफरेंट एक्चुअली बनती नहीं. जैसे ही मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ, अभी क्या है मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, तो या तो मैं आपको बहुत ज्यादा प्लीज करने की कोशिश करती हूँ, फिर अगर आप थोड़ा सा हर्ट, आप मेरे से खुश नहीं हुए तो मैं एकदम से रिएक्ट करके या तो विदड्रॉ हो जाती हूँ. बोथ केसेस इट इज एन एक्सट्रीम केस. अगर मैं स्टेबल हूँ कि मेरी खुशी मेरे हाथ में है, मुझे आपको खुश करना नहीं है, मुझे खुश रहना है. अगर मैं खुश रहूंगी मेरी वाइब्रेशन राइट होगी, मेरी वाइब्रेशन अपर डिपेंडेंट नहीं है, मेरे मुख से गलत वर्ड निकल नहीं सकता. इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि मेरे वचन, मेरे वर्ड्स का, मेरे एक्शंस का जो बीज है वो है यहाँ. अब सिर्फ क्या हो रहा है कि अंदर आई एम इन पेन, इनसिक्योरिटी इज पेन, तो मुझे बहुत एफर्ट करना पड़ता है. मुझे अच्छा बोलना है, मुझे अच्छा करना
1: है. एक और बात, यहाँ पे मैं आपसे इनसिक्योर नहीं हूँ. ओके, आई रियलाइज दैट माई हैप्पीनेस इज माई ओन क्रिएशन एंड मुझे भय नहीं रहा, लेकिन मैं कहीं और से पेन लेकर आई हूँ बाहर से. जैसे हम कहते हैं ना कि हमें ये देखना चाहिए कि उनका मूड भी तो ऑफ है. सपोज मेरा ही मूड ऑफ, ठीक है, और मैं, लेकिन मुझे आपके साथ मेरे रिएक्शन में, मुझे पता है आपके साथ मेरे रिलेशनशिप में इट्स नथिंग लाइक दैट, तो तब भी तो कई बार वाइब्रेशंस जो है वो इस तरह की जाएंगी जो कि विच विल नॉट बी वेरी गुड एक्चुअली इवन इफ.
0: एब्सोल्युटली, लेकिन वाइब्रेशंस तो हमारा, सी वाइब्रेशंस हमारे यहाँ बॉक्स है. इट्स लाइक अ बॉक्स दैट वी क्रिएट एंड दैट्स व्हाई वी सेड पूरी यात्रा में हमें बहुत ध्यान रखना है पड़ता है सारा दिन, क्योंकि एक स्टेप पर जो एनर्जी क्रिएट की, लेट्स से सुबह मॉर्निंग में एक डिस्टर्बेंस घर में हुई, वो जो एनर्जी ऑफ डिस्टर्बेंस क्रिएट की वो सिर्फ घर तक नहीं रहती है, वो घर से फिर मेरे काम पर जाती ही है. और फिर एक बार वो थॉट का साइकिल ऐसा वाला शुरू हो जाता है ना, डिस्टर्बेंस वाला, ऐसे ही है, कुछ नहीं होता, कोई मेरी बात नहीं सुनता, सब यू नो, वो क्वालिटी की थॉट जो क्रिएट हो गई तो फीलिंग कैसी क्रिएट हो गई? इट इज ऑब्वियसली ऑफ डिस्टर्बेंस. तो दिस नाउ विल कैरी फॉरवर्ड विद मी टू वर्क. अब ऑफिस में भी फिर मेरा आज सारा दिन थोड़ा सा वैसे वाला बीतेगा. फिर व्हेन आई कम फ्रॉम वर्क टू होम आई विल अगेन कैरी फॉरवर्ड दैट एनर्जी, फिर उसी तरह व्यवहार. तो ये तो कैरी फॉरवर्ड तो हर जगह ही हो रहा है.
1: फिर मेरा रिलेशनशिप आपके साथ, जब मैं घर आई, या जो भी मेरे हस्बैंड है या वाइफ है, उनके साथ तो मेरा रिलेशनशिप में मुझे पर से कोई प्रॉब्लम नहीं थी. डिपेंडेंट, आई वॉज नॉट लुकिंग फॉर हैप्पीनेस और लाइक यू नो, बट आई माई सेल्फ वॉज डिस्टर्ब्ड विद समबडी एल्स, समथिंग एल्स.
0: पर स्टेबिलिटी क्या है वो एक्सपीरियंस किया, तो वो स्टेबिलिटी पर्सन स्पेसिफिक नहीं होती है, सिचुएशन स्पेसिफिक नहीं होती है, क्योंकि स्टेबिलिटी डिपेंडेंट नहीं है. एक बार हमने स्टेबल रहना सीख लिया, वो स्टेबिलिटी मींस कि हम डिपेंडेंट नहीं है. जब वो आपने सीख लिया तो वो फिर आप चाहे मेरे साथ हैं, इधर हैं, उधर हैं, किसी के भी साथ हैं, वो आपकी स्टेबिलिटी इंटैक्ट है ना, क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं है. लेकिन जब डिपेंडेंट थी तो इस पर भी डिपेंडेंट है, इधर भी डिपेंडेंट है, उधर भी डिपेंडेंट.
1: इट विल बी विद ऑल और इट विल बी विद नॉन.
0: एब्सोल्युटली, दैट इज द क्रक्स. इधर यू विल बी हैप्पी, यू विल बी ऑलवेज हैप्पी, एंड इफ यू आर डिस्टर्ब यू आर गोइंग टू बी मोर और लेस डिस्टर्ब. यस, ये हो सकता है कि आपने मेरे साथ अच्छी तरह से बात की तो मैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो डिपेंडेंसी है. और वो डिपेंडेंसी फिर क्या क्रिएट करेगी? हमेशा वही एफर्ट कि ये मेरे साथ ठीक रहे, वो भी मेरे से नाराज है, वो भी मेरे से नाराज है, कम से कम ये तो मेरे साथ ठीक रहे. इन द प्रोसेस आई विल सेंड यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी. तो हम जो एफर्ट, हम सोचते हैं कि अगर हम अंदर स्टेबल होंगे तो ये मुझे इनडिफरेंट कर देगा, नहीं. हम समझते कि स्टेबिलिटी मीन्स इनसेंसिटिव, लेकिन स्टेबिलिटी विल मेक मी ऑल द मोर सेंसिटिव, क्योंकि स्टेबिलिटी मीन्स हमारी जो ओरिजिनल नेचर है, हैप्पीनेस, लव और पीस, ये नेचुरल फ्लो करेगी. इसको जबरदस्ती क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये मेरी नेचुरल होगी जो फ्लो करेगी. एंड ये वो चीज है जो सबसे पहले सामने पहुंचती है. इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल कि ये वो सामने नहीं पहुंचेगी. एंड वंडरफुल बात ये होती कि इफ आई रियली क्रिएट लव for you, even if I say something जो थोड़ा सा harsh है, suppose मैं कह दूं मुझे नहीं लगता कि जो आज आपने पहना है वो इतना अच्छा नहीं है. बट आई एम वेरी क्लियर कि इंटेंशन क्या है, व्हाट डू आई फील फॉर द ऑपोजिट पर्सन, तो आपको वो बात हर्ट नहीं करेगी क्योंकि वो हर्ट की एनर्जी के साथ गई नहीं है. क्यों नहीं गई है? क्योंकि यहाँ हर्ट नहीं है. लेकिन हम क्यों हर्ट बहुत जल्दी एक्सपीरियंस करते हैं? क्योंकि जो हमें बोलने वाला है
1: वो दे उस इंटेंशन से,
0: इंटेंशन से शायद नहीं दे रहा होता, लेकिन उसके पास एनर्जी

0: वाले है ना, तो अगर मेरे अंदर वो एनर्जी इनसिक्योरिटी की है कि मेरे कुछ बोलने से इनको पता नहीं बुरा ना लगे, या अब वो इनसिक्योरिटी के साथ मैं बहुत ध्यान से भी कोशिश करूँ ना बोलने की आपको कि शायद जो आपने पहना है, लेकिन वो फिर भी हर्ट कर जाएगा। क्यों करेगा? क्योंकि एनर्जी इनसिक्योरिटी की, वो पेन की नेगेटिव एनर्जी। सो व्हेन यू आर स्टेबल आपको पुट ऑन नहीं करना पड़ता, आपको इतना केयरफुल नहीं रहना पड़ेगा कैसे बोलूं, इनको बुरा तो नहीं लगेगा। कितनी सोच सारा दिन ये चलती है कि जो मैं बोल दूंगी ये बुरा तो नहीं लगेगा। क्यों बुरा लगेगा? बुरा लग नहीं सकता इफ इट हैज गॉन विद द राइट वाइब्रेशन, एंड देन द रेस्ट ऑफ द वर्क इज द ऑपोजिट पर्सन एनीवेज। लेकिन हम नेचुरल रहते हैं, इसको कहते हैं अपनी नेचर। नेचर मतलब वो जो हमारा स्वरूप है शांति का, खुशी का, उसको एक्सपीरियंस करना, और फिर जिस भी रिश्ते में जाएंगे वो वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली फ्लो करते हैं,
1: सहज होते जाएंगे,
0: एंड कर्म तो फिर ऑटोमेटिकली होता जाएगा। अच्छा, बट इट विल गो विद द राइट एनर्जी,
1: यू नो। सो अगेन चेकिंग इज ऑन यू नो कि आप कितने नेचुरल हैं,
0: और वो नेचुरल तब होते जाएंगे जब डिपेंडेंट नहीं है। तो एक एक अपनी डिपेंडेंसी को चेक करें, ये भी एक बहुत सटल चेकिंग है, क्योंकि कई बार हमें खुद नहीं पता होता कि हम कितने लोगों पर और कितनी चीजों पर डिपेंडेंट हैं। आपने पहले कहा था फ्रीडम, जहां डिपेंडेंसी है वहां फ्रीडम
1: नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यस,
0: देयर इज, इट कैन नॉट बी टुगेदर। फ्रीडम और डिपेंडेंसी कच्चे नहीं हो सकती। अगर मैं किसी पर डिपेंडेंट हूं तो देन हाउ एम आई फ्री? फ्री मतलब उनके प्रभाव से, उस बात के अफेक्ट से आई शुड बी फ्री।
1: होता यह है कि बहुत सी चीजें बहुत इंटरलिंक्ड होती हैं। आप मेरे बॉस सपोज, ठीक है, आपकी जो हैप्पीनेस है मैं क्यों देख रहा होता हूं? क्योंकि मेरा काम, मेरा पूरा दिन भर आपके साथ रहना है, मेरी बहुत सी चीजें और बाकी जुड़ी हुई होती हैं। आप मेरे हस्बैंड हैं, बहुत सारी चीजें जो हैं मेरा अगर नहीं हुआ, अगर ये रिलेशनशिप नहीं ठीक चला, बहुत कुछ और है। तो अगेन दैट इज वाई द इनसिक्योरिटी।
0: दैट्स ट्रू, बट रिलेशनशिप को ठीक चलाने के लिए क्या चाहिए? तो राइट एनर्जी। तो ये नहीं है कि हमें करना बंद करना है, कि ऑफिस में जो करना है, लेकिन अगर मेरी राइट एनर्जी होगी तो जो मैं कर रहा हूं वो कैसे, वो अफेक्ट हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा क्या? इज इट एवर पॉसिबल कि मैं अंदर खुश हूं, स्टेबल हूं, और जो मैं कर रहा हूं बाहर, चाहे वो ऑफिस में है या वो घर में है, उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी? इट जस्ट नॉट पॉसिबल।
1: नहीं, बट देन होता क्या है कि सपोज बॉस का या हस्बैंड का भी लेते हैं, आपकी हर बात मानता जाता हूं मैं, अपनी बात कहने का जो फ्रीडम है, जो फ्रीडम की आपने बात की, वो हिम्मत नहीं रख पाता, क्योंकि मेरी बहुत सारी चीजें जो है वो डिपेंडेंट हो जाती है।
0: पर जब वो डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी तब आप बिना रूड हुए या बिना हर्ट हुए भी अपनी बात सामने वाले को कह सकते। आज मेजोरिटी प्रॉब्लम क्या है, अंदर बहुत सारा कुछ भरा हुआ है, कह नहीं पा रहे हैं, और कह नहीं पाने के कारण अंदर ही अंदर रखा कर रहे हैं, खुश नहीं है, क्यों बोल नहीं पा रहे हैं। तो कम्युनिकेशन is really not there actually. क्यों? Because I don't have the courage to speak the truth. And why do I not have the courage to speak the truth? Because I'm scared कि जैसे ही अगर मैंने कहा तो आपका disapproval तो नहीं मुझे मिलेगा, आप नाराज तो नहीं हो जाएंगे। ये insecurity मुझे अंदर ही अंदर घुटती जाती है, and then how can I ever be happy with so much of discomfort? That's why we realize कि ये सारा discomfort, ये सारा upheaval, ये सारी insecurity, ये बाहर किसी की वजह से नहीं है।
1: I have created it. And in fact, अगर आपने कहा कि बात भी तभी करो, even if you know that once you're stable inside, अगर हम इसी अनस्टेबिलिटी में, इसी जो भी हर्ट, एंगर जो भी है, उसमें जाके बात करेंगे,
0: इट वॉन्ट वर्क अगेन। तब इट विल नॉट वर्क, क्योंकि सपोज मेरे को कुछ प्रॉब्लम है और मुझे कहनी है, लेकिन वो मुझे अपने पर्सपेक्टिव को स्टेबल रख के फिर कहनी है। लेकिन अगर वो इस भाव से कही जा रही है कि मुझे कंप्लेंट करना है आपके अगेंस्ट, या मुझे आपको थोड़ा सा नीचे दिखाना है, अपने आप को सुपीरियर फील कराना है, या मुझे आपको क्रिटिसाइज करना है, तो कितने भी अच्छे तरह से उस बात को रख दो, इट जस्ट वॉन्ट वर्क। वो एनर्जी तो साथ में जाने ही वाली है। वी नॉट एबल टू सी दैट एनर्जी इज फ्लोइंग विद द वर्ड्स। हमें लगता है सिर्फ वर्ड्स ट्रांसमिट होते हैं।
1: तो मैंने बहुत अच्छी तरह से
0: फिर हम कहते हैं मैंने तो बहुत अच्छी तरह से उनको कहा था, पता नहीं क्यों नाराज हो गया, पता नहीं उनको क्यों वो बात बुरी लग गई है। वो जिस एंगल से देख रहे हैं दैट इज ओके, देयर जर्नी। बट अगर मेरी कोई कही हुई बात या कुछ कहा सामने वाले को पहुंची है, एंड द पर्सन हैज क्रिएटेड हर्ट, कहीं ना कहीं आई हैव टू चेक माई एनर्जी। मैं उनको नहीं चेक कर सकती, उनको नहीं चेंज कर सकती, अपने आप को तो चेक

आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के बारे में चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का पवित्र और धार्मिक ग्रंथ है, जिसमें भगवान ने बताया है कि इंसान को अपने कर्तव्यों पे, अपने कर्मों पे ध्यान देना है। मोह से ग्रस्त अर्जुन की पीड़ा को दर्शाया गया है। जब इंसान मोह के वश हो जाता है तब वह अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाता। परमात्मा कहते हैं मोह भी एक विकार है। जब इंसान मोह के वश हो जाता है तब वह अपना धर्म, अपना कर्तव्य इन सबसे दूर हो जाता है। भागवत गीता में परमात्मा ने जीवन जीने की सही दिशा हमें दिखाई है, जीवन जीने की सही कला हमें सिखाया है। गीता के पहले अध्याय में कर्म योग के बारे में बताया गया है। गीता के दूसरे भाग में भक्ति योग के बारे में बताया गया है और गीता के तीसरे भाग में ज्ञान योग के बारे में बताया गया है। गीता में बताए गए उपदेश सभी मानव जाति के लिए हैं। गीता के

उपदेश सभी के कल्याण अर्थ है। जीवन की कोई भी परेशानी हो, कोई भी परिस्थिति हो, अगर हम गीता का अध्ययन करते हैं तो हमें उस परिस्थिति से निकलने का मार्ग मिल जाता है। परमात्मा शिव द्वारा गीता ज्ञान श्री कृष्ण को प्राप्त हुआ और श्री कृष्ण द्वारा यह गीता ज्ञान समस्त मानव जाति को प्राप्त हुआ। गीता को सर्व शास्त्र शिरोमणि कहा गया है। आज इस एपिसोड में हम गीता के 3 अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। गीता के पहले अध्याय में अर्जुन की मन की अवस्था को दर्शाया गया है। जब इंसान मोहवश हो जाता है तब वह अपने कर्तव्यों से दूर हो जाता है और परमात्मा ने हमें मोह से मुक्त अपने कर्मों पर ध्यान देने की प्रेरणा दी है। भगवान कहते हैं कि कर्तव्य पालन की याद इस गीता में दिलाई गई है और अपनी दुर्बलता को त्यागने का आदेश भी दिया गया है। जीवन के उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। शैक्षिक ज्ञान, विद्वत्ता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं को हल करने में व्यर्थ है। यदि कोई हमारी सहायता कर सकता है तो वो केवल एक सद्गुरु है। वास्तव में ज्ञानी होता है वह न तो मृतकों के लिए और न जीवितों के लिए शोक करता है, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है। अर्जुन को यह पता नहीं था कि आत्मा और परमात्मा का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है, अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो यह जान ले वही विद्वान है और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। आत्मा अमर है, शाश्वत है। हम सब पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। आत्मा शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होती रहती है। उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। धीरज रखने वाला व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। इंद्रियों से उत्पन्न सुख दुख अस्थायी है, जैसे सर्दी और गर्मी का आना जाना। एक ज्ञानी पुरुष को सब कुछ सहन करना सीखना होता है और अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होना है। जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों में समान रहता है वह निश्चित रूप से अमृतत्व की स्थिति को प्राप्त करने योग्य है। श्रोतेहो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए।

0: आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में तो कर्म इंद्रियों के भी गुलाम। ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन बुद्धि संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सबकी गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी कि पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार हैं गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने भौतिक शरीर का कोई स्थायित्व अस्तित्व नहीं बताया है। भगवान कहते हैं आत्मा शाश्वत भी है और अपरिवर्तित भी है, शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है, सभी के शरीर में चैतन्य आत्मा विराजमान है जिसे नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है, अर्थात उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। शरीर स्वभाव से नाशवान है, यह इसी क्षण नष्ट हो सकता है या 100 वर्ष बाद भी। शरीर को अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है, किंतु आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर की बात है। आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता। वेदांत सूत्र में आत्मा को प्रकाश बताया गया है क्योंकि वह परम आत्मा का वंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे सृष्टि का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक शरीर का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस शरीर से बाहर निकल जाती है, शरीर सड़ने लगता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है, शरीर का कोई महत्व नहीं है। आत्मा को किसी भी अस्त्र शस्त्र से मारा नहीं जा सकता। अस्त्र शस्त्र से शरीर का नाश होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा कभी उत्पन्न नहीं होती न मरती है, वह नित्य शाश्वत सदाकाल से है और अजन्मा है, और शरीर के मारे जाने से वह नष्ट नहीं होती। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यह आत्मा न तो किसी शस्त्र द्वारा काटी जा सकती है, न अग्नि इसे जला सकती है, न जल इसे भिगो सकता है, और न ही वायु इसे सुखा सकता है। आत्मा अखंडित है, यह शाश्वत स्थिर अविकारी तथा सदैव एक सी रहने वाली है। आत्मा न तो देखी जा सकती है और न ही इसमें कोई बदलाव होता है। शरीर के मृत्यु पर शोक करना व्यर्थ है। आत्मा अनेक जन्मों में शरीर धारण करती है और कुछ समय बाद उसे छोड़ देती है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है।

मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। आत्मा शरीर मिलने से पहले अव्यक्त अवस्था अर्थात निराकारी अवस्था आत्मिक चैतन्य प्रकाश के रूप में होती है। शरीर मिलने के बाद आत्मा व्यक्त भाव में आती है। शरीर छूटने के बाद आत्मा फिर से अव्यक्त अर्थात चैतन्य प्रकाश के रूप में रहती है। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता। शरीर में रहने वाले आत्मा का वध नहीं किया जा सकता। क्षत्रिय का अर्थ है रक्षा करना। धर्म की रक्षा के लिए हमें अगर परिस्थिति, व्यक्ति, सगे संबंधियों के खिलाफ भी खड़ा होना पड़े तो भी धर्म रक्षा के लिए हर परिस्थिति से हमें लड़ना है। वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें धर्म रक्षा के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार नहीं करना चाहिए, सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। श्रोतेहो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो खुशियाँ बांटो।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूँ आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, गीता में भगवान ने कहा कि निष्काम भाव से कर्म करना है, हर कर्म ज्ञान युक्त हो। जीवन के मार्ग पर जो स्थिर चित्त से चलते हैं उनकी बुद्धि एकनिष्ठ होती है, जबकि अस्थिर चित्त वालों की बुद्धि अनेक दिशाओं में भटकती रहती है। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मन में भगवान के प्रति दृढ़ निश्चय नहीं होता। जीवन में लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म अभिमानी होकर रहना है। कर्म करने का अधिकार है, परंतु उसके फल पर मनुष्य आत्मा का कोई अधिकार नहीं है। जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समान भाव से अपना कर्म करते रहना है। ऐसी समता योग परमात्मा ने गीता में बतलाया है। जब उसकी बुद्धि मोह रूपी भ्रम को पार कर जाएगी तब वह सभी कर्म कांडों के प्रति अनासक्त हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं, आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाने से दिव्य चेतना प्राप्त होती है। जो व्यक्ति समस्त इच्छाओं को त्याग कर आत्मा में ही संतुष्ट रहता है तभी उसे स्थिर बुद्धि योगी कहा जाता है। जो व्यक्ति दुखों में विचलित नहीं होता, सुख में आसक्त नहीं होता और क्रोध भय तथा राग से मुक्त रहता है वही स्थिर बुद्ध मुनि कहलाता है। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर हो सकता है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित कर भीतर कर लेता है वैसे ही इंद्रियों को इंद्रियों के विषय वासना से खींचकर मनुष्य

अपने मन को स्थिर करता है और पूर्ण चेतना में स्थिर हो सकता है। इंद्रियों से भले ही कोई इंद्रिय भोग को छोड़ दे, लेकिन तब तक रस बना रहता है जब तक परम रस की, परमात्मा की अनुभूति नहीं होती। इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को पूर्णतः वश में करके अपनी चेतना को भगवान में लगाता है, वही स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। इंद्रिय विषयों को छोड़कर उनके चिंतन भी करने वाला व्यक्ति आसक्ति उत्पन्न होने के कारण उस व्यक्ति के अंदर काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य का पतन होता है। परमात्मा ने कहा कि क्रोध मनुष्य के पतन का कारण है, क्रोध से बुद्धि भ्रष्ट होती है। जो व्यक्ति राग द्वेष से मुक्त होकर इंद्रियों को वश में करता है, वह ईश्वर की कृपा को प्राप्त करता है। परमात्मा में मन लगाने से शांति प्राप्त होती है। शांति के बिना सुख भी नहीं हो सकता। यदि मन किसी एक इंद्रिय के पीछे भी चला गया तो वह मनुष्य की बुद्धि को उसी प्रकार भटकाता है जैसे प्रचंड वायु पानी में नाव को दूर बहा ले जाती है। वही व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला होता है जिसकी समस्त इंद्रियां विषयों से हटकर पूर्णतः उसके वश में होती है। श्रोते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर लिए, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स, क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद मैं उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी, कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट वेन, वेर एवर, एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस।

0: इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं क्रिएट इट।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, मैं हूँ आज शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, गीता में भगवान ने कहा है कि जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयम के जागने का समय है, अर्थात अमृत वेले का समय है। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है। जो ऐसी इच्छाओं को पूर्ण करने की चेष्टा नहीं करता, जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का त्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से मुक्त रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है अर्थात मोह को त्याग दिया है तथा अहंकार से मुक्त है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि हर व्यक्ति को प्रकृति के गुणों के अनुसार कर्म करना ही पड़ता है। भोजन ग्रहण करने से पहले भगवान को अर्पित करना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मा में आनंद प्राप्त करता है और आत्म साक्षात्कार में पूर्ण तथा संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई बंधन नहीं होता, वो सदा मुक्त है। मनुष्य को फल की आसक्ति को त्याग कर निरंतर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वह परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। जनक जैसा महान राजा भी कर्म के मार्ग का ही अनुसरण कर सिद्धि को प्राप्त हुए, इसलिए समाज को दिशा देने के लिए भी श्रेष्ठ कर्म करना आवश्यक है। जो महान व्यक्ति अपने आचरण से आदर्श प्रस्तुत करते हैं, सामान्य लोग उन्हीं का अनुसरण करते हैं। वह अपने कार्यों से पूरी दुनिया को दिशा दिखाते हैं। जैसे अज्ञानी लोग फल की कामना से कर्म करते हैं, वैसे ही ज्ञानी जन को बिना आसक्ति के लोक कल्याण के लिए कर्म करना चाहिए। व्यक्ति अहंकार के कारण अपने आप को सभी कर्मों का कर्ता मानता है, जबकि वास्तविकता में कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा होते हैं। जो व्यक्ति परम सत्य को जानता है वह भौतिक इंद्रियों के कार्यों से दूर रहते हुए अपने समग्र कर्मों को भगवान की सेवा में नियोजित करता है। माया के गुणों से मोहग्रस्त अज्ञानी व्यक्ति भौतिक कार्यों में संलग्न रहते हैं, लेकिन ज्ञानी को चाहिए कि वह उन्हें विचलित न करे। सभी कार्यों को भगवान में समर्पित करके किसी भी आसक्ति और स्वामित्व के बिना शुद्ध ध्यान और आलस्य से मुक्त होकर कार्य करना चाहिए। जो व्यक्ति ईर्ष्या और मोह के बिना परमात्मा के श्रीमत का पालन करते हैं, वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हर व्यक्ति अपने प्रकृति अनुसार स्वभाव संस्कार अनुसार कर्म करता है। मन का दमन करने से किसी के स्वभाव को बदला नहीं जा सकता। प्रत्येक इंद्रिय के अपने राग और द्वेष होते हैं और इन्हीं के कारण आत्म साक्षात्कार की राह में बाधाएं उत्पन्न होती है। मनुष्य को इनके वश नहीं होना चाहिए। रजोगुण से उत्पन्न काम विकार आत्मा को पाप कर्मों में प्रवृत्त करता है। काम विकार मनुष्य की शुद्ध चेतना को मैला करता है। काम विकार कभी जीवात्मा के ज्ञान को नष्ट करता है, उसे कभी संतुष्ट नहीं होने देता। काम महाशत्रु है। अपने आप को इंद्रिय मन बुद्धि से परे चैतन्य आत्मा जानकर काम विकार के शत्रु को जीतने का उपदेश गीता में दिया।

आ गया है। श्रोतेहो, उम्मीद करती हूँ आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे गीता के अगले अध्याय के साथ, तो सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुणेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ये आ जाता है कि क्या करता है हमें, क्या होता है हमारे साथ जब हम गुस्सा कर रहे होते हैं। और दूसरी बात हमने ये समझा था, ये बिलीफ था कि दूसरों के कारण या फिर किसी सिचुएशन के कारण हमें गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन एक और बिलीफ सामने आया था कि गुस्सा जब भी आता है उसकी वजह मैं खुद होता हूं, क्योंकि मैं कर रहा होता हूं या मैं कर रही होती हूं वो गुस्सा। ये भी जरूरी नहीं कि आप इस बिलीफ को माने, जरूरी है कि हर बार जब क्रोध आए तो समझे, पॉज लें और उसके बाद उसे खुद अनुभव करें। और आगे चल के ये भी जानने की कोशिश की थी कि क्या कुछ और बिलीफ हैं जो गुस्से या क्रोध से जुड़े हुए हैं। आज की इस कड़ी में जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से और ऐसे कुछ मान्यताएं, बिलीफ्स हैं जो हमने जिंदगी में शामिल कर ली हैं जो कि गुस्से से जुड़ी हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं रामा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, एक बात जो सामने आई थी वो ये गुस्से से जुड़ी हुई थी कि गुस्सा जो है वो एक मान्यता हम अभी तक जो चल रही थी कि दूसरों के कारण गुस्सा आता है। और आपने ये कहा था कि अगर हम देखें सही तरह से, अगर उसे जांचें तो गुस्सा हम खुद कर रहे होते हैं। तो ये भी अनुभव के ऊपर चलते हुए करना था। और कुछ और ऐसे बिलीव्स गुस्से से जुड़े हुए हैं, क्या हम थोड़ा और उनके बारे में जान सकते हैं कि क्या है वो और बिलीव्स?
1: कई बार या ज्यादातर ऐसे होता कि परिस्थिति इस तरह हमें दिखाई देती या जो सामने वाले व्यक्ति ने जो बोल हमारे प्रति यूज किए वो इस तरह होते हैं कि एकदम से हम ऊपर से कहते और कोई चॉइस ही नहीं थी मेरे पास,
0: कोई चारा नहीं,
1: गुस्सा तो मतलब करना ही था उस टाइम, और तो कोई ऑप्शन था ही नहीं जैसे उस टाइम। ये भी एक बिलीफ अंदर बना है कि आई हैव नो चॉइस, आई हैड टू गेट एंग्री। और जबकि वास्तविकता ये है कि, और ये क्यों हमारा बिलीफ सिस्टम बना, क्योंकि बचपन से ही या एजुकेशन सिस्टम में या पेरेंटिंग सिस्टम में कहीं ना कहीं किसी ने हमें ये सिखाया भी नहीं कि आई हैव अ चॉइस, कि मैं अपनी थॉट्स एंड फीलिंग्स अपनी चॉइस से क्रिएट करती हूँ। कहीं ना कहीं बचपन से ही वो चला आया कि वो जैसे अपने आप क्रिएट हो रहा है, तो वो किसी ने सिखाया नहीं, तो आई एम नॉट कॉन्शियस ऑफ इट। जबकि वास्तविकता ये है कि एट एवरी स्टेप आई हैव 100% चॉइस।
0: इट मीन्स एट एवरी स्टेप आई हैव टू स्टार्ट क्वेश्चनिंग, लुकिंग एट इट एटलीस्ट।
1: सी इट्स लाइक दिस कि आप उठाकर ये कप अभी फेंक दो नीचे और इसको तोड़ दो, एंड आई विल शाउट एट यू, एंड देन इफ आई से ऊपर से कि आई हैड नो चॉइस, आपने किया ही उस तरह से, या आप कुछ ऐसी अब्यूजिव लैंग्वेज आप अभी यूज करो, एंड आई जस्ट शाउट बैक एट यू एंड आई सेड आई हैड नो चॉइस, आपने बात ही इस तरह से की, यू नो, एंड आई विल एकदम से चेंज माय वे ऑफ टॉकिंग एंड आई विल से आपने बोला ये इस तरह से, तो आपको क्या लगता है कि उसके बाद मुझे किस तरह से बात करनी चाहिए थी आपसे? माई होल वे ऑफ टॉकिंग विल चेंज। क्यों? क्योंकि मैंने जस्टिफाई कर लिया कि जब आप इस तरह से बात करेंगे तो मेरे पास कोई चॉइस है नहीं, आई एम लाइक अ मशीन।
0: No, but do I have a choice? Yeah, this is...
1: You don't think you have a choice?
0: Yeah, but then actually, you know, अगर हम देखें तो एंगर को हम एक टूल की तरह भी यूज करते हैं कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि अगर मैं अपने आप,
1: मोर इम्पोर्टेंट इज डू आई हैव अ चॉइस, हम क्या कर रहे हैं वो इट्स डिफरेंट। डू आई हैव अ चॉइस या आई एम ऑटोमेटिक?
0: वी बिकम ऑटोमेटिक, बट येस वी कैन हैव अ चॉइस।
1: नो, वी हैव अ चॉइस। इट्स नॉट, अगर हम ये भी कहें कि वी कैन हैव अ चॉइस, इसका मतलब ये है कि हो तो सकती है, चॉइस अभी नहीं है, अगर यूज करेंगे तो है, बट वास्तव में तो हर स्टेप पर है। आपने जो बुरा भला कहना था आपने कहा, अब उसके बाद मुझे क्या कहना है ये तो आप नहीं कंट्रोल करते। आई हैव अ चॉइस। एंड आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे हम अपने मूड के हिसाब से अपनी चॉइसेस को यूज करते भी हैं। कई बार मूड बहुत अच्छा, तो अगर आपने कुछ बहुत बुरा भी कह दिया, मेरा मूड ही इतना अच्छा है उस टाइम, क्या इसे
0: हाँ चलो छोड़ो, हाँ
1: तो व्हाट डिड दैट हैपन? आपने तो फिर भी उतना ही बुरा कहा था। और कई बार मूड अच्छा नहीं है तो आपने थोड़ा सा भी कुछ कह दिया दामिल को, एंड आई से आई हैव नो चॉइस। दो टाइम्स आई हैव ऑलरेडी यूज्ड दो डिफरेंट चॉइस, तो इट्स जस्ट दैट मेरे को कॉन्शियसली उस चॉइस को यूज करना है। और उसके लिए पहली बात ये बिलीफ सिस्टम को चेक करना पड़ेगा, आई हैव नो चॉइस। क्योंकि अगर मैंने यहां अंदर ये प्रोग्रामिंग की हुई है, एवरी बिलीफ सिस्टम वो पूरा डैमेज कर रहा है, रॉन्ग बिलीफ सिस्टम। आई हैव नो चॉइस मतलब मुझे गुस्सा करना अलाउड है। आई हैव अ चॉइस, मैं जो थॉट जो फीलिंग अभी क्रिएट करूं इट्स माई चॉइस। देन आई आस्क माई सेल्फ, which one do you want and which one would it always be? It will never be anger.
0: Actually, usse bhi pehle sister Shivani ki ye choices pe bhi aate hain, ek aur baar rub in karna bahut zaruri hai

नमस्कार, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आप सबका स्वागत। ओम शांति। आपको याद होगा कि इन दिनों हम बात कर रहे हैं एंगर की। एंगर यानी गुस्सा यानी क्रोध। ऐसा लगता है कि जिंदगी का सच है गुस्सा करना या गुस्सा अपने आसपास चारों ओर देख रहे हैं। लेकिन पिछली बार हमने बात ये की थी कि ये गुस्सा ये क्रोध जिसे हम मान के चलते हैं कि ये बहुत सहज है,

0: anger is bad, you know. Somewhere we don't even accept it. We हम ये मान के ही चलते जा रहे हैं कि गुस्सा कर भी दिया तो क्या हो गया, काम तो निकला. कम से कम हम ये एहसास ही नहीं कर पाते हैं कि तभी ये सारी इस पे काम करना हम तभी शुरू करेंगे जब कहीं बेसिकली अंदर डीप विद इन वी वुड लाइक कि एंगर शुड गेट आउट ऑफ माय सिस्टम.
1: इसीलिए कहता है कि सबसे पहली चीज परिवर्तन के लिए फर्स्ट वो होगा अंडरस्टैंडिंग कि एंगर मेरे लिए हानिकारक है. जब तक वो नहीं होगा तो सेकेंड स्टेज पर नहीं जाएंगे. फर्स्ट थिंग इज एंगर इज अनहेल्दी फॉर मी, इट इज एब्सोल्यूटली बैड फॉर मी, नॉट फॉर द वर्ल्ड, नॉट फॉर एनीबडी एल्स, फॉर मी. सेकेंड इज देन कि मैं उसके लिए जिम्मेवार हूं. एंड थर्ड इज कि कौन सी बिलीफ सिस्टम है जो मुझे चेंज करनी है. बिलीफ सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे जब तक उससे मुक्त होना नहीं चाहेंगे. तो अगर क्रोध अच्छा लगता है देन यू डोंट हैव टू गेट रिड ऑफ इट. इट्स ओनली अगर वो आपको कंफर्टेबल नहीं है, आपको और आपके चारों तरफ जो लोग हैं, आपके अपने हैं, आपके ऑफिस के लोग हैं, उनके लिए भी वो हानिकारक है, तो देन व्हाई नॉट. व्हाट गुड, अगेन एंगर इज गुड, तो व्हाट गुड इज इट गिविंग टू मी, वो देखना होगा. आई हैव नो चॉइस, इस ऑप्शन को चेक करें, नहीं तो वो बार बार अंदर इतना स्ट्रांग प्रोग्राम्ड होगा कि आउट ऑफ चॉइस रिस्पॉन्सेज चलते जाएंगे. एंड अनदर वेरी कॉमन बिलीफ सिस्टम इज कि एंगर तो नॉर्मल है. ये तो नॉर्मल है, यू नो, इसमें गलत क्या है, गुस्सा किया तो इसमें गलत क्या है. तो नॉर्मल की परिभाषा भी हमने कैसे बनाए, क्योंकि कर करके हमने इतनी बार गुस्सा किया, इतनी बार गुस्सा किया कि अब वो हमारा संस्कार बन गया है. तो कोई भी चीज बार बार करने से वो हमारा संस्कार बन गया एंड वी आर कम्फर्टेबल विद इट. और तब जब हम उसको कर भी देते हैं तो हम कहते हैं ये तो नॉर्मल है, यू नो, इसमें गलत क्या है. तो जब तक हम ये बिलीफ रखेंगे कि एंगर नॉर्मल है, वी विल नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. आई विल हैव टू टेल माई सेल्फ कि एंगर एक नॉर्मल इंसान के लिए टोटली अबनॉर्मल है. एंगर इज अबनॉर्मल क्योंकि इट डजेंट मेक मी फील गुड. ये चेंज करना पड़ेगा. जैसे मैंने अपने आप को कहा एंगर अबनॉर्मल है मेरे लिए, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. लेकिन पकड़ के रखा एंगर नॉर्मल है, तो नॉर्मल चीज तो मुझे करना अलाउड है. हर बिलीफ सिस्टम इज गोइंग टू लेट एंगर कम वेरी नेचुरली टू मी. एंड वही बिलीफ सिस्टम को चेंज किया माय बिहेवियर.
0: और हर बार जब भी मैं गुस्सा हुआ या हुई, कोई ना कोई बिलीफ सिस्टम साथ में था तभी वो गुस्सा हुआ. सो अगेन ओके, चेकिंग एक्चुअली इज दैट कि मैंने कौन से बिलीफ सिस्टम को लेकर गुस्सा किया.
1: सेल्फ अवेयरनेस इज दैट. सेल्फ अवेयरनेस ये होगी कि जब आपको गुस्सा आने लगा है, आप चेक करेंगे कि कौन से बिलीफ सिस्टम से मैं इसको अलाउ कर रही हूँ. वेन यू आर अवेयर यू चेक विच बिलीफ सिस्टम एंड जैसे आप उस बिलीफ सिस्टम को देख लेते हैं ड्रॉप इट. यू नो, जैसे सपोज आपने कुछ बुरा कहा मुझे अभी और मैंने जस्ट गुस्सा करना शुरू किया एंड एकदम से आई एम अवेयर कि मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं देखूं कौन सा बिलीफ सिस्टम है उन्होंने मुझे गुस्सा दिलाया. चेक माई बिलीफ सिस्टम, उन्होंने तो दिलाया नहीं, ड्रॉप एंड आई डोंट गेट एंग्री.
0: सचिवानी एक और बिलीफ सिस्टम जो आई कैन एक्चुअली क्लियरली सी इज कि एंगर इज जस्टिफाइड. जब एक छोटी सी बात मैं लेती हूँ कि सपोज कहीं बहुत जल्दी पहुंचना है, कहीं पॉइंट टाइम है और अपॉइंटमेंट है या मेजर मेरा प्रोग्राम है या लाइव है और सपोज माई ड्राइवर हैपन्स टू बी लेट और मेरा ब्लड प्रेशर तो ऊपर नीचे हो चुका है पहले ऑलरेडी, तो उसके आते ही उसके पास कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन नहीं है जो वो किया जाए, तो यहाँ ऐसा मुझे लगता है कि मुझे हर बार ये लगा कि जस्टिफाइड है. गुस्सा तो चढ़ेगा ही, मतलब इट्स जस्टिफाइड. और तब अगर मैंने गुस्सा कर दिया तो यू नो वेयर हाउ टू चेंज दैट. एक्चुअली
1: व्हेन यू स्टिल फील कि वो यूजफुल है उससे,
0: नहीं यूजफुल नहीं है, लेकिन
1: एक तो बहुत डेंजरस सिचुएशन में आप है क्योंकि आप एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपकी स्टेट ऑफ माइंड बहुत अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो आपके प्रोग्राम में वो रिफ्लेक्ट होगी, स्पेशली अगर आप इस तरह का प्रोग्राम करने आ रहे हैं. और दूसरा, आप उन पर गुस्सा कर रहे हैं जो आपकी गाड़ी चलाने वाले हैं अभी, तो अगर उनका भी माइंड डिस्टर्ब हो गया तो सिचुएशन कुड गो आउट ऑफ कंट्रोल. व्हाट गुड हैज कम आउट ऑफ इट उनको गुस्सा करने के बाद.
0: लेकिन मेरा मुझे लगता है कि मैंने वेंट आउट किया अपना.
1: वेंट आउट तो किया क्योंकि ऑलरेडी क्रिएट कर दिया था. लेकिन क्रिएट भी क्यों किया जब मुझे समझ में आ जाए अगर कि ये हानिकारक है, मैं क्यों क्रिएट करूंगे. ज्यादा से ज्यादा मुझे सिर्फ क्या करना है, जो कि आवश्यक है कि जब वो व्यक्ति पहुंच जाता है, आई जस्ट आस्क हिम व्हाट द रीजन इज कि आप लेट क्यों हैं. और अगर उनके पास एक वैलिड रीजन नहीं है

0: हम एक बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन इश्यू कर सकते हैं कि मुझे प्रोग्राम पे पहुंचने में लेट हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम आई वॉन्ट कि यू शुड नॉट बी लेट अदरवाइज आई माइट हैव टू टेक सम एक्शन फॉर दैट बिकॉज आई कैन नॉट अफोर्ड टू बी लेट. लेकिन उसके लिए अपना ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे और फिर इतना एनर्जी रिलीज एंड फिर दूसरे का ब्लड प्रेशर इतना ऊपर नीचे प्रॉबेबली वो सब नहीं चाहिए.
1: लेकिन कई बार ये लगता है कि जब गुस्सा किया मतलब ज्यादातर हम ज्यादातर लोगों में ये आती है बात कि गुस्सा कर दिया तो अगली बार यू नो ही हैज दिस माइंडसेट कि मुझे टाइम पे पहुंच जाना चाहिए अदरवाइज शी विल गेट एंग्री. तो इसके कारण काम हो जाता है. लोगों को ये लगता है कि मोटिवेट भी
0: गुस्सा एक मोटिवेटर है कि ये काम कराता है और इसको तो हम बहुत अच्छी तरह से यूज करते हैं और ये हमारे हर क्षेत्र पे यूज हो रहा है. पेरेंट्स बच्चों के साथ यूज करते हैं
1: मोटिवेटर मैं गुस्सा हो जाऊंगा मतलब वो
0: इवन कॉर्पोरेट सेक्टर में सीनियर लेवल से लेकर के गुस्सा कराने से काम जल्दी हो जाएगा. एंड इवन आज हम देखते हैं लाइक यू नो जो सीनियर लेवल पर हैं कॉर्पोरेट्स में वो सोचते हैं कि अगर इनको गुस्सा कर दो ना तो ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने लग जाएंगे क्योंकि इनको लगेगा हमें करके दिखाना है. बट इट्स नॉट रियली गोइंग टू हैपन दैट वे क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम बार बार गुस्सा करते हैं और कईयों की पर्सनैलिटी भी ये बन जाती है कि वो डिलिबरेटली गुस्सा करते हैं ताकि उनको ये लगता है कि उनके गुस्सा करने से जो सामने वाला है वो कुछ नया सोचेगा वो क्रिएटिव सोचेगा वो यू नो कुछ करके दिखाएगा या जितना देर में करने वाला था उससे जल्दी करके दिखाएगा क्योंकि उसको डर है कि मैंने गुस्सा किया या गुस्सा कर दूंगा. बट एक्चुअली व्हाट हैपेंस जो सामने वाला है वो स्विच ऑफ हो जाता है जब उसका सीनियर उसे गुस्सा कर देता है. वो जो परफॉर्म कर सकता था ना एक्चुअली उससे कम परफॉर्म करता है. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वो उस सीनियर से तो बिल्कुल दूर हो जाता है बिल्कुल. और यहां तक कि आपको वो सीनियर बहुत ज्यादा पसंद नहीं है आप अवॉइड करना शुरू करते हैं कि इनसे तो बहुत ज्यादा मिलना ही ना पड़े. किसी भी रिलेशनशिप की जो फाउंडेशन है वो है ट्रस्ट और रिस्पेक्ट और ट्रस्ट और रिस्पेक्ट दोनों गुस्से से नहीं मिलने वाले हैं. तो ट्रस्ट और रिस्पेक्ट अगर हमें बिल्ड करनी है एक रिलेशनशिप में तो गुस्सा उस रिलेशनशिप में एक्सेप्टेबल नहीं है. जब हम गुस्सा करते हैं बार बार स्पेशली एज अ सीनियर अगर हम अपने जूनियर्स पे या एज अ पेरेंट अपने बच्चों पे बार बार गुस्सा करते हैं हम प्रूव कर रहे हैं कि मेरा अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है मेरी अपनी कोई रिस्पेक्ट नहीं है. आप मेरी क्या रिस्पेक्ट करोगे मेरी खुद ही रिस्पेक्ट नहीं है. दैट्स वाई आई एम गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल एवरी टाइम. तो एंगर इज नॉट द टूल क्योंकि एज अ लीडर एज अ टीम लीडर या एज अ पेरेंट आपको करना क्या है आपको इन्फ्लुएंस करना है. आप चाहते हैं ना कि आप जो चाहते हैं वो हो जाए तो आपका प्रभाव उन पर पड़ना चाहिए. लेकिन आपका इन्फ्लुएंस उन पर पड़े उसके लिए वो आपके क्षेत्र में तो होने चाहिए इंटरनली. लेकिन अगर वो आपसे इतनी दूर चले जाते हैं तो आपका इन्फ्लुएंस उन पर कैसे पड़ेगा क्योंकि इंटरनली वो आपसे बिल्कुल स्विच्ड ऑफ है. दे आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू व्हाट यू आर सेइंग. ओनली आउट ऑफ फियर दे आर डूइंग व्हाट यू वांट. तो फियर और रिस्पेक्ट लव एंड फियर ये सब इकट्ठे नहीं रह सकता. तो अगर आपको कोई डरता है आपसे आपको अगर लगे कि ये अच्छा साइन है दैट्स अनदर रॉन्ग बिलीफ. कई लोग समझते हैं डर को ही रिस्पेक्ट समझ लेते हैं कि हाँ सब लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं. क्यों? क्योंकि सब लोग डरते हैं. डर इज नॉट रिस्पेक्ट नॉट एट ऑल. लव इज रिस्पेक्ट. अगर सच में हमें रिस्पेक्ट करते हो तो वो प्यार होना चाहिए. डर कैसे हो सकता है? डर मतलब आप सामने कुछ और हैं और पीछे कुछ और है. सो वी कैन नेवर यूज एंगर एज अ मोटिवेटर नेवर. एंड उसके लिए एक सिंपल प्रैक्टिस हमें यही करनी पड़ेगी कॉन्शियसली अटेंशन देके लोग जो हैं जैसे हैं उन्हें एक्सेप्ट करना शुरू करो. दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट. डोंट ट्राई टू ऑलवेज चेंज पीपल.
1: लेकिन फिर हमारे काम नहीं हो पाए. फिर
0: हमारे काम फिर भी होंगे क्योंकि वो जो है जैसे हैं उस पोटेंशियल को एक्सेप्ट करके फिर हम उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और ज्यादा आगे बढ़ने के लिए. बाकी हमें ये समझना पड़ेगा कि उनकी क्षमता कितनी है. आप किसी को उसकी क्षमता से बहुत ज्यादा आगे पुश नहीं कर सकते हो गुस्से से. उल्टा गुस्सा करने से आप उसको और ही अपनी क्षमता से नीचे ले आएंगे. और जो एनर्जी एक्सचेंज होगा सारा दिन उसका क्या और जो मेरा नुकसान होगा.
1: सबसे बड़ा सबसे आई थिंक हमें बहुत सेल्फिश हो जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं इट्स रियली डिप्लीटिंग
0: सेल्फिश.
1: एंड ऑफ कोर्स एक और बात ये कि इससे ये मेरी आदत बनता जा रहा है.
0: और एक्चुअली अगर हम देखें तो जब हम इस तरह

0: मेथड यूज करते हैं, हमारा अपना मोटिवेशन, हम मोटिवेटर के लिए यूज कर रहे हैं ना, हमारा अपना मोटिवेशन लेवल तो डाउन हो जाएगा और जो दूसरे का मोटिवेशन है वो भी कहीं ना कहीं डाउन होगा और एनर्जी एक्सचेंज जो बीच में है दैट्स वेरी नेगेटिव। तो इट्स हर स्टेप पे हानिकारक है। जो हमने इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की, जो रैशनल इंटेलिजेंस यूज करेंगे आईक्यू सिर्फ, वो सिर्फ काम की तरफ देखते हैं, टास्क ओरिएंटेड, काम हो जाना चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक द वर्क शुड गेट डन, उसके लिए आप गुस्सा करो, चिल्लाओ, जो भी करना है, दैट इज रैशनल इंटेलिजेंस। एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, काम हो जाएगा लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि लोग आपस में मिलजुल कर प्यार से चले, उनका ज्यादा फोकस ये होगा कि रिलेशनशिप्स, लोग आपस में बहुत हेल्दी हो, एंड दे आर श्योर अबाउट दैट कि जब वो हेल्दी होंगे तो काम तो अपने आप हो जाएगा। तो फोकस चेंज हो गया, टास्क ओरिएंटेड की जगह पीपल ओरिएंटेड। तो इमोशनल इंटेलिजेंस जिन लोगों की हाई होगी दे विल बी मोर पीपल ओरिएंटेड, एंड वो आप तब होंगे पहले जब आप सेल्फ ओरिएंटेड होंगे।
1: अगेन दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अल्टीमेटली वी ऑल हैव टू रियलाइज दैट जो भी ये एंगर की बात जहां तक आती है, पहला मुझे लगता है कि ये शब्द हमेशा याद रखें कि ये हमारे लिए खराब है, इट्स अनहेल्दी फॉर मी, फॉर द सोसाइटी ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड, एंड व्हेन वी लुक एट टेलीविजन, जब हम दुनिया की बात कर रहे होते हैं हम हर बार बोलते हैं कि सॉल्व बिकॉज ऑफ एंगर,
0: लेकिन सॉल्व बिकॉज ऑफ एंगर।
1: अच्छा, यहाँ एक और बात मैं जानना चाहती हूँ कि जब आपने मोटिवेशन की बात की, पेरेंट्स या उनके बच्चों की बात करें या फिर बॉस और सबॉर्डिनेट्स की बात करें, जनरली ये कहते हैं कि अगर मैं गुस्सा करता हूँ तो प्यार भी तो करता हूँ। तो एक ये कहीं ना कहीं हमें खुद को ये फीलिंग होती है कि गुस्सा करके गलत ही किया हुआ है,
0: राइट? तो इसलिए उसके लिए हम कॉम्पेंसेट भी करते हैं। और बहुत बार ना ये भी एक बिलीफ सिस्टम है कि गुस्सा करेंगे नहीं अगर तो सर्वाइव कैसे करेंगे,
1: मेरी प्रोटेक्शन है। आई मेट समबडी हू सेड कि एंगर इज माई प्रोटेक्शन,
0: राइट?
1: अदरवाइज पीपल विल यू नो ईट मी अप।
0: एब्सोल्युटली।
1: बट
0: अब इसको भी चेक करें ना, आप देखेंगे जितना सीनियोरिटी में आप ऊपर जाते जाएंगे आपके नीचे जितने लोग हैं जिनके आप जिम्मेवार हैं वो बढ़ते जाएंगे। एंड अगर आप सबके साथ ये वेपन यूज करेंगे कि गुस्से से काम होता है, जस्ट सी द डैमेज दैट यू डू टू योर सेल्फ। क्योंकि एक जने को आपने गुस्सा किया, वो जितनी एनर्जी सारी आपने उस तक फेंकी, बाद में वापस किसके पास आएगी?
1: डेफिनेटली
0: मेरे पास आएगी। अब उसके पास देने के लिए वो पहले मुझे किसके अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी, दैट इज द बिगेस्ट यू नो आयरनी, मतलब वी कांट हेल्प इट। मुझे आपको गुस्सा करना है, आई हैव टू गिव एंगर टू यू, लेकिन आपको देने के लिए पहले मुझे अपने आप को देना पड़ता है। तो पहले यहाँ क्रिएट होता है वो सारा, तो सारा वो नेगेटिविटी पहले यहाँ क्रिएट होती है, यहां से निकलती है, आपकी तरफ जाती है। तो जो गुस्सा कर रहा है उसका जो डैमेज है वो अंदर से बाहर है, उसने अंदर वो एनर्जी क्रिएट की फिर बाहर की तरफ फेंकी। जो गुस्से को रिसीव कर रहा है उसका जो डैमेज है वो बाहर से अंदर है, वो बाहर से रिसीव करेगा और फिर उसको जितना अंदर लेकर जाना पड़ेगा वो लेके जाएगा। तो ज्यादा नुकसान किसका हुआ?
1: जिसके अंदर से जा रही है वो।
0: एवरी स्टेप जो आपको जो दिया आप तक तो पहुंचते पहुंचते वो डायल्यूट होगा और फिर आपके पास अपनी लेयर है कि आपको कितना लेना है, लेकिन आपको देने के लिए सारा तो मैंने अपने अंदर से क्रिएट किया। अब आप सिर्फ एक है, अब मुझे सारा दिन में कम से कम 10-15 लोगों को इस तरह से गुस्सा करना पड़ता, क्योंकि ड्राइवर नहीं आया, फिर मेड ने ठीक से काम नहीं किया, बच्चे बिगड़ रहे हैं, फिर इधर जूनियर, फिर उधर कोई और। सो ऑन एन एवरेज हमारे पास कम से कम 10-15 लोग होंगे सारा दिन के अंदर जिन्हें हम जस्टिफाई करते हैं कि हमें गुस्सा करना पड़ता है। करते जाइए, उन सबको एक एक बार मिलेगा और हमें 10 लोगों को करने के प्रोसेस में 10 बार हमारे अंदर से गुजरेगा, फिर वो 10 लोगों तक पहुंचेगा और फिर वो रिटर्न में हमारे बारे में कैसे सोचेंगे?
1: कंटिन्यूस रिलेशनशिप की
0: नहीं, नेगेटिव ना। अभी आपको गुस्सा कर दूं तो आप कैसे सोचोगे? वही सब सोचोगे, वो सारी एनर्जी कहाँ आएगी? यहाँ आएगी। तो 10 बार क्रिएट किया बाहर जाते थे, 10 बार अंदर। तो सारा दिन में मुझे कितनी बार मिला? आप सबको एक एक बार मिला मुझे ना। अगर फिर भी अपना इतना नुकसान करना चाहते हैं,
1: अगेन यू नो शिवानी, यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि वो इतना जल्दी, मैंने पहले भी बात की थी कि रिएक्शन इतनी जल्दी होता है या गुस्सा इतनी जल्दी आता है और हम सोचने से पहले पहले तक ही एक्शन ले चुके होते हैं।
0: मतलब ये चीज उस टाइम नहीं सोचनी है, डेफिनेटली, क्योंकि अगर उस टाइम सोचेंगे तो ये अब रुकने वाला नहीं है। ये जब

0: अभी आप जब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है, ये तब सोचने की बात है कि ये सारे जो मेरे बिलीफ सिस्टम्स हैं, जो हमने कहा गुस्सा कोई हमें और दिलाता है, गुस्सा नॉर्मल है, गुस्सा नेचुरल है, ये भी एक बहुत कॉमन, ये तो नेचुरल है. इनफैक्ट अगर कोई कहे कि मुझे गुस्सा नहीं आता, एवरीवन विल लुक एंड मोस्टली पीपल विल से ये तो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो इतना अननेचुरल समझा जाता है. तो गुस्सा नेचुरल है ये भी क्यों हम समझते हैं, क्योंकि हम मेहनत नहीं करना चाहते, तो हमने उसी को लेबल दे दिया, क्योंकि अगर वो अननेचुरल है तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी नेचुरल स्थिति पर आने के लिए, तो हमने उसी को नेचुरल लेबल दे दिया. जैसे अगर किसी को बुखार, यू नो, कईयों का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा रहता है, तो 99 नॉर्मल रहता है. अब सी अगेन, 99 नॉर्मल रहता है, क्यों? 99 इज नॉट नॉर्मल, लेकिन क्योंकि वो हमेशा ही 99 उनका रहता है एंड दे आर नॉट एबल टू ब्रिंग इट डाउन, तो उन्होंने अपने लिए ये पैरामीटर सेट कर दिया कि मेरे लिए ये नॉर्मल है. सेम थिंग हैपेंड विद दिस. किसी को अगर कोई बीमारी और लग जाए जो कि जिसका इलाज नहीं हो सकता, दे एक्सेप्ट दैट कि मेरे लिए ये अब ये नॉर्मल है. अगर मेरे घुटनों में दर्द रहता है एंड मैं कुछ मेहनत नहीं करना चाहती उसको ठीक करने के लिए, द अदर ऑप्शन इज एक्सेप्ट कर लूं कि मेरे लिए अब ये दर्द नॉर्मल है एंड आई लर्न टू लिव विद द पेन. मुझे पता है जब तक चलना है, जब तक जीना है उस दर्द के साथ चलना. सेम थिंग विद दिस पेन, इसको भी मैंने नॉर्मल कर दिया, तो आई लर्न टू लिव विद दैट पेन and I accept it as normal. And जैसे ही मैंने उसको कह दिया वो natural है, that's danger sign for me. Because when I say anger is natural, that means okay, I don't need to make any effort at all.
1: हो सकता है कि बहुत से दर्शक ये कहें भी कि हाँ, जब मैंने मान लिया इसे कि natural है, तो मैं बस और बहुत सी चीजें काम करने की, इस पर काम क्यों करें,
0: क्यों करें, क्योंकि और main justification उसका ये भी हो जाता है, सब लोग करते हैं. सब लोग ही तो कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, यू नो, कि सब कुछ करते हुए, घर परिवार सब संभालते हुए गुस्सा ही ना आए. यू नो, दैट्स हाउ नेचुरल, इट्स सो इनग्रेन्ड दैट बिलीफ सिस्टम कि ये तो नेचुरल है. आजकल जैसे बहुत हम पढ़ते हैं हेल्थ के बारे में, अगर तो लोग हमें बताते हैं कि जितना हम भोजन खाते हैं, पका हुआ जितना भोजन खाते हैं, तला हुआ, फ्राइड, ये हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स क्रिएट करता है. हमें पता है, फिर भी हम वो भोजन खाते हैं और फिर वो टॉक्सिन्स क्रिएट करता है और हम कहते हैं ये तो नेचुरल है. अब टॉक्सिन्स तो नेचुरल नहीं हो सकता, नेचुरल तो हेल्दी बॉडी है. हमने अपनी बीमारियों के साथ अपनी बॉडी को एक्सेप्ट कर लिया कि ये नेचुरल है. तो आजकल ज्यादातर किस चीज का प्रचार हो रहा है कि डिटॉक्सिफाई योर बॉडी, यू नो, बीच बीच में कुछ ऐसा करें जिससे वो सारे टॉक्सिन्स जो अक्यूमुलेट हुए हैं वो निकल जाने चाहिए. तो डिटॉक्सिफाई योर बॉडी, उसके लिए आप कच्चा खाओ, फ्रूट खाओ. ओके, जो कर सकते हैं वो कर लेंगे, जो नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो एफर्ट नहीं करना पड़ चाहते अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने के लिए. सेम थिंग विद द माइंड, दीज आर टॉक्सिन्स, ये अक्यूमुलेट हो गए हैं. आप मेडिटेशन कीजिए, अपने ऊपर अटेंशन रखने शुरू कीजिए, इट विल गेट डिटॉक्सिफाइड, पूरी तरह से वो पॉइजन सारा बाहर निकल जाएगा. मेहनत नहीं करना चाहते, ये तो नॉर्मल है. तो उस टॉक्सिन को, उस जहर को जो अंदर भरा हुआ है, उसी को नेचुरल मान के चलना अपने लिए कितना हानिकारक हो जाता है. इट इज सच सो डैमेजिंग, हम कितना नुकसान अपना करते हैं.
1: और नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग कि ये कहां तक जा रहा है. जैसे आपने कहा कि जो चीजें जो फिजिकल लेवल पे हमें टॉक्सिक है, उनके लिए तो हम फिर भी एक बार को सोचते हैं और जानने की कोशिश जरूर करते हैं. इसको हम समझ ही नहीं पाते. जिस तरह की बातें हम कर रहे हैं कि बिलीफ सिस्टम हमारा ये है, ये सारी मान्यताएं हैं कि ये सहज है, ये नेचुरल है, ये जरूरी है, मेरे सर्वाइवल के लिए जरूरी है. एक मैं ऐसे शख्स को जानती हूं जो कि एक बहुत बड़ी पोस्ट में है और वो अपने सबॉर्डिनेट को हमेशा, देयर वाज दिस लेडी टाइपिस्ट ही हैड, एंड उनको इतना शाउट और कर किया, वो बाहर चले गए एंड देन ही एक्चुअली चेंज हिमसेल्फ एंड ही सेड एक्टिंग कर रहा था क्योंकि डांटना जरूरी था. मैंने बोला तो ये आपकी बॉडी को कितना कर रहा होगा. तो ही सेड कि नहीं, मेरे को मैं तो एक्टिंग कर रहा था. बट अगेन वो उतनी देर के लिए, आई थिंक
0: एब्सोल्युटली ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उसको क्रिएट करो और वो अंदर वो टॉक्सिन्स नहीं क्रिएट हो. एंड आप क्यों, जरूरी क्यों, ये कौन सा बिलीफ सिस्टम था? आपका तो नुकसान हुआ ही हुआ और सामने वाले का. एंड एक सेकंड के लिए इवन सोचना चाहिए कि जब हम किसी को इतनी दूर से डांट देते हैं और जब वो व्यक्ति जाता है, अपने जगह पे जाता है, बैठ कर काम करता है, उसकी मनोस्थिति कैसी होगी? कितनी देर तो लग जाती है अपने आप इसको स्टेबलाइज करने में. एंड वी एक्चुअली शाउटेड एट द पर्सन ताकि उसकी परफॉर्मेंस
1: अच्छी हो जाए.
0: ये कौन सा बिलीफ सिस्टम?
1: एक और बिलीफ सिस्टम जो मुझे लगता है

0: gives me power.
1: Yeah.
0: It gives me energy. Yeah. You know, adrenaline flows when I get angry.
1: क्योंकि जब वो गुस्सा आता है एकदम से तो इट्स लाइक अ सर्ज ऑफ पावर यू नो एकदम से उत्तेजना जिसको कहते हैं तो अलर्टनेस ये लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है लेकिन एक्चुअली उसके बाद कैसा फील होता है बिल्कुल ड्रेन आउट मेंटली इमोशनली हम बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो जाते हैं लेकिन उस थोड़े क्षणों के लिए वो एड्रेनालिन रश जो मिलता है लेकिन धीरे धीरे क्या होता है बॉडी को उसकी एडिक्शन हो जाती है अब वो एड्रेनालिन स्मॉल अमाउंट्स में इज ओके लेकिन जब वो बार बार उतना सिक्रेट होता जाता है दैट इज ऑल्सो टॉक्सिक फॉर द बॉडी ऑल्सो तो इसीलिए ये सारे जो बिलीफ सिस्टम बन गए इनको कहीं ना कहीं हमें हर समय चेक करना पड़ेगा आप देखो आजकल पेपर में जब हम पढ़ते हैं किसी ने अपने आप को मारने की कोशिश की किसी ने सुसाइड किया किसी ने अपनी रिस्ट स्लिट कर ली फिजिकल हार्म तो हम क्या सोचते हैं अरे ये कैसे अपना इतना नुकसान कर सकते थे और उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है अब ये केसेस कितने होंगे रोज के 100,000 पूरे वर्ल्ड लेकिन मेंटल हार्म
0: जो हम खुद को दे
1: इमोशनल हार्म फिजिकल हार्म बहुत कम लोग करते हैं और वो भी जब हम पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं अपने आप को पता नहीं कैसे कर सकते हैं और मेंटल एंड इमोशनल हार्म वो हम में से कौन कौन कर रहा है एवरीवन एवरी डे एंड प्रोबेबली वेरी वेरी ऑफन ड्यूरिंग द होल डे तो वो हम अपने आप को कैसे कर सकते हैं हम अपना ही नुकसान खुद ही कैसे कर सकते हैं और फिर बोलते हैं उन्होंने नुकसान किया उसने मेरे साथ ऐसा किया मैंने अपने साथ कैसा किया दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन
0: डेफिनेटली यू नो समवेयर एक्चुअली और मैं बहुत जस्टिफाइड करता रहता हूँ मैंने कभी ये सोचा ही नहीं एक्चुअली इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान मेरा अपना हो रहा है और ना सिर्फ इमोशनली या मेंटली फिजिकली भी बहुत नुकसान पहुंचाया जा रहा
1: है रिलेशनशिप्स ऐसे में बार बार करने से ज्यादा थोड़े समय के बाद हम बहुत अकेले हो जाते हैं बिकॉज आई टेंड टू गेट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम एवरीवन अराउंड मी क्योंकि फिर बहुत ज्यादा लोग मेरे आसपास रहना पसंद नहीं करते रिलेशनशिप
0: आई एम नॉट लाइक एक्चुअली पर्सनैलिटी ये बन जाती है बहुत मतलब बहुत क्लियरली ये बात समझ में आती है सबसे शिवानी और ये पता भी नहीं चलता मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा कब बन गई मुझे समझ में ही नहीं आ पाया वक्त नहीं है अब लेकिन एक बात मैं छूना चाहूंगी कि कारण क्या है ये जो गुस्सा है इसका इसकी वजह क्या है जो इसे हम इतना सहज मान के चलते आ रहे हैं
1: गुस्से का मेन कारण है कि जब अंदर जो हमने कहा इमोशनल डिस्टर्बेंस क्या है हमारी जो कॉन्शियसनेस की एनर्जी है इसमें डिस्टर्बेंस होता है तब जब दुनिया वो नहीं करती जब मुझे चाहिए जब लोग वो नहीं करते जो मुझे चाहिए या जो लोग वो कर देते हैं जो मुझे नहीं चाहिए जब सिचुएशंस वैसी हो जाती हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती तो मुझे गुस्सा आता है इट्स बेसिकली आई हैव गॉट यूज्ड टू दिस वेरी स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम द वर्ल्ड शुड बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वांट देम टू बी एंड व्हेन द वर्ल्ड इज नॉट द वे आई वांट देम टू बी देन आई एम अलाउड टू गेट एंग्री आई हैव गिवन मायसेल्फ द जस्टिफिकेशन क्योंकि फर्स्ट आई गेव मायसेल्फ द बिलीफ पीपल शुड डू व्हाट आई वांट देम टू डू Then I give myself the belief, if they don't do what I want them to do, then I'm allowed to get angry. And then I'm living my whole life with this wrong belief system. And it just goes on in a vicious cycle. तो कहीं ना कहीं इस cycle को अब बहुत ज्यादा नहीं आगे बढ़ने दे अभी रुक जाए
0: Break देना
1: बहुत Break now. And इसके लिए immediately क्या करना होगा Rewind कीजिए आज के सारा दिन में कि कब आपको गुस्सा आया And गुस्सा does not necessarily mean कि आप बहुत जोर से किसी पर चिल्ला दिए गुस्सा कुड मीन जस्ट अ लिटिल डिस्टर्बेंस गुस्से का लेवल अलग अलग होगा लेकिन गुस्सा तो गुस्सा ही है जहां थोड़ा भी डिस्टर्बेंस हुआ तो स्टॉप कीजिए अभी और चेक कीजिए वो जब गुस्सा आया था कौन सा बिलीफ सिस्टम वर्क कर रहा था
0: बिल्कुल
1: क्योंकि जैसे आपने कहा कि उस टाइम तो अब याद रहने वाला नहीं है जब गुस्सा आएगा लेकिन अगर जो इंसिडेंट्स हो गए हैं उनको चेक करें कि उस टाइम क्यों गुस्सा आया था तो अगली बार जब कोई इंसिडेंट आएगा क्योंकि मेरी प्रोग्रामिंग वैसे हो गई होगी माइंड में आई विल बी मोर केयरफुल एंड आई विल चेक विच बिलीफ सिस्टम इज वर्किंग एंड आई विल बी एबल टू लेट इट गो
0: वंडरफुल शिवानी कि ये एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसको अगर हम कंटिन्यू करें क्योंकि जरूरी ये है कि सबसे पहले इस बात को ये समझ लें कि गुस्सा बहुत अनहेल्दी है मेरे लिए ही खराब है और मुझे अपने लिए सोचने के लिए इससे दूर होना जरूरी है इस बातचीत को और आगे बढ़ाएंगे जारी रखेंगे लेकिन फिलहाल आपसे इजाजत लेते हैं बहुत बहुत धन्यवाद ओम शांति
1: ओम शांति
0: गुस्से की जहां तक बात की जाए तो गुस्सा अभी तक हम

रहे थे कि बहुत जस्टिफाइड है, कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे बिलीफ सिस्टम्स को लेकर चल रहे थे, लेकिन आज हमने एक बात और जानी कि उसका कारण क्या है। आज इस थॉट को लेकर अपने साथ रखते हैं कि गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि जैसा मैं चाहता हूं वैसे ना तो लोग कई बार एक्ट करते हैं और ना ही सिचुएशंस आती हैं, तो वो मुझ में एंगर क्रिएट करती हैं। इस बात को अपने साथ रखें और फिर ये कोशिश करें कि क्या सचमुच ऐसा ही हो रहा है, और हर बार की तरह अनुभव की कसौटी पर अपने आप को उतारते जाएं और जहां लगे कि हाँ ये कसौटी सही है, हम खरे उतर रहे हैं, फिर अपने आप को चेंज करना आसान हो सकता है। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में हो सकता है आपके पास कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसा सवाल हो जो आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत। आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नम्बर है 09999934666, 09873666555, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। गुस्से के एक कारण को हमने समझने की कोशिश की, और भी कई कारण हो सकते हैं। कौन से हैं वो कारण, क्या है जड़ जहां से गुस्सा पैदा होता है, और कितने प्रकार का गुस्सा होता है, ये सब जानने की कोशिश अपनी अगली कड़ी में करेंगे। अब दीजिए इजाजत। ओम शांति।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं, ठीक है। चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस, कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

वतन का राग के श्रोताओं को हमारा नमस्कार। गढ़मंडला के राजा थे शंकर शाह और उनके पुत्र का नाम था रघुनाथ शाह। पिता पुत्र दोनों ही क्रांतिकारी कविताएं लिखा करते थे। राजा ने अपने एक बेईमान कर्मचारी गिरधारी दास को अपने राज्य से निकाल दिया था। तब उस कर्मचारी ने पिता पुत्र द्वारा क्रांतिकारी कविताएं लिखे जाने की बात अंग्रेजों को न सिर्फ बताई बल्कि भावार्थ भी समझा दिया। कविता लिखने के जुर्म में उन्हें मृत्युदंड सुना दिया गया। अंतिम इच्छा स्वरूप उन्होंने उसी कविता का पाठ किया जिसकी वजह से उन्हें मृत्युदंड दिया जा रहा था। कविता समाप्त होते ही दोनों का शरीर मांस के छोटे छोटे टुकड़े बनकर दूर तक बिखर गया और दूर तक बिखर गई क्रांतिकारी पिता पुत्र की शहादत की कहानी, जिसमें कलम का मुकाबला तोप ने किया था। तारीख थी 18 सितंबर 1858। उनकी शहादत पर कुदरत ने विद्रोह किया और आकाश में घन गरज उठे।

娘的姐姐，这娘的姐姐，快娘的姐姐，这娘的姐姐。

सितंबर 1929 हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक चिरस्मरणीय और महत्वपूर्ण तारीख। किसी भी राष्ट्र के जीवन में इस प्रकार की तिथियों का बहुत ही गौरवपूर्ण और पवित्र स्थान होता है। उन दिनों जब हम अंग्रेजी साम्राज्यवाद से मोर्चा ले रहे थे, तब विप्लवी यतीन्द्रनाथ दास ने लाहौर जेल में अनशन कर तिल तिल करके अपने प्राण देकर राष्ट्र को एक महान बलिदान का पाठ पढ़ाया था। उनके बलिदान ने हमें वाकिफ करवाया था कि आजादी की कीमत क्या होती है।

बाबा पृथ्वी सिंह का जन्म 15 सितंबर को हुआ था। बचपन से ही उनके दिल में देशभक्ति की भावनाएं हिलोरे ले रही थी। पहले वे भारत से बर्मा गए, फिर अमेरिका पहुंचकर उन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था भारत में गदर फैलाकर अंग्रेजों की खिलाफत करना। भारत आकर वे अन्य क्रांतिकारियों से मिले। जब वे पुलिस के हाथ लगे तो उन पर लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चलाया गया। पहले उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, बाद में जनता के विद्रोह करने पर सजा को काले पानी की सजा में बदल दिया गया। 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा तो उन्हें सद्भावना स्वरूप रिहा कर दिया गया। चंद्रशेखर आजाद से मिलने के बाद उन्होंने अपने नाम के साथ आजाद जोड़ लिया और पृथ्वी सिंह से पृथ्वी सिंह आजाद बन गए। बाबा पृथ्वी सिंह उन भाग्यशाली क्रांतिकारियों में से थे जिन्होंने देश को आजाद होते हुए देखा था, गुलामी के अंधेरों से निकलकर एक नया संसार बनते हुए देखा था।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। संगीतकार थे उमेश वीनस, तापसी नागराज और मॉरिस लाजरस। आलेख और उद्घोषणा सुधा अनुपम, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की। आज के इस कार्यक्रम में आपने जो गीत सुने उन्हें हमने लिया था स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा जन गर्जे श्रृंखला के अंतर्गत जारी ऑडियो एल्बम से।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी न कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी। तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम

0: लगाया हुआ था वो पहले खत्म, वन। सेकंड, अब मैं अगर वाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए, उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए वाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम वाइट एनर्जी भेजेंगे मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: भर दिल बटुए में ले गई एक चंपे की डाली,
1: भर दिल बटुए में ले गई एक चंपे की डाली।
0: दिल के वर्ष दिल का हार गए हम मैच, दिल के वर्ष दिल का हार गए हम मैच।

0: I see only myself.
1: Right, when I have
0: I can see, here is the world. Suppose this is the world. You are the world for me. Let's say. ये दुनिया है, मुझे इसको देखना है. अगर मैं आपको खिड़की के थ्रू देख रही हूँ, मतलब खुला है सब, आई कैन सी यू एज यू आर. लेकिन अगर बीच में एक आईना है, मिरर है, आईने में आई कैन सी ओनली माई सेल्फ. थ्रू वॉट आई सी माई सेल्फ देन आई सी यू. सो आई डू नॉट सी यू एज यू आर. ये बहुत डीप लाइन है और इसीलिए उसने लिखा कि बहुत कम हम लोगों को और सिचुएशंस को वो जैसे हैं वैसे परख सकते हैं. वी डू नॉट डिसर्न देम एज दे आर. जो लास्ट टाइम भी हम बात कर रहे थे कि जब हम औरों को चेंज करने के लिए कहते भी हैं या औरों को उनकी आदत के लिए, संस्कार के लिए क्रिटिसाइज करते हैं, जो आपने कहा इतना भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं आता, एट दैट टाइम वी आर सीइंग पीपल थ्रू अ मिरर, नॉट थ्रू द विंडो.
1: और ये सारी बातों में आता है, कर्टेसी में, खाने में, उठने में,
0: हर चीज में,
1: ताकत में, सेहत में, मतलब कॉमन सेंस में, हर जगह बोल देते हैं इतना तो होना चाहिए.
0: कॉमन सेंस के लिए कितना इजीली बोलते हैं, इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है.
1: कर्टेसी में कम बोलते हैं, कम से कम खड़े तो हो जाते
0: हैं,
1: नमस्ते झुक के नहीं करते, एटलीस्ट दिस बार चाय तो पूछ लेते हैं, नहीं पिलाओ भले पूछ तो लेते हैं. मतलब हर चीज में हेलो,
0: सब कुछ हम आईने के थ्रू कर रहे हैं.
1: किस किस तरह के प्रॉब्लम होते हैं. मेरे घर में एक झगड़ा हुआ था कि सम गेस्ट ऑफ माइंड, उन्होंने मेरे भाई का फोन उठा दिया. तो उन्होंने सोचा कि अमेरिका से फोन कर रहा है मेरा भाई, तो उन्होंने जल्दी से फोन लाके मेरे को दिया. तो बोले फोन उसको वापस दो, वापस दे कि आपको इतनी कर्टेसी नहीं है, पहले हेलो हाय नमस्ते कुछ भी. तो वो बोल रहे भाई मैं समझी आप अमेरिका से लाइटनिंग शाइटनिंग पता नहीं क्या आपके पैसे लगेंगे. वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से
0: कॉन्फ्लिक्ट का कितना बड़ा रीजन है. और इसीलिए जैसे वो लाइन थी कि इसीलिए हम लोगों को और सिचुएशंस को परख ही नहीं सकते, क्योंकि हम वो जो हैं जैसे हैं वैसे उनको हम नहीं देख रहे हैं, हम उनको आईने के थ्रू देख रहे हैं. आईने के थ्रू देख रहे हैं मतलब अपने संस्कार के थ्रू जब हम उनको देखेंगे तो वो जो हैं जैसे हैं वैसे हम उनको नहीं देखेंगे. राजयोग मेडिटेशन से जब हम अपने माइंड को साइलेंट करना शुरू करते हैं, एक माइंड में टर्बुलेंस चल रही है, अपने संस्कार, ईगो का कभी, हर्ट का कभी, एंगर का कभी, इरिटेशन का, ये जब चल रहे हैं और इनके थ्रू हम दूसरों को देखेंगे तो दूसरे जो हैं जैसे हैं वो कभी नहीं दिखाई देंगे.
1: धूल थी चेहरे पर, हम आईना पोछते रहे.
0: बिल्कुल,
1: चेहरे पे अपना नहीं पोछ रहे हैं.
0: अब सेम चीज जब ये माइंड साइलेंट हो जाएगा, मतलब ये जो अक्वायर्ड संस्कार है वो साइलेंट है, तब सामने वाला जो है जैसे है वैसे दिखाई देगा. इसीलिए परखने की शक्ति कितनी इम्पोर्टेंट है. परखने की शक्ति अगर सही नहीं होगी तो निर्णय शक्ति सही नहीं होगी. निर्णय शक्ति सही नहीं होगी तो कर्म सही नहीं होगा. कर्म सही नहीं होगा तो भाग्य सही नहीं बनेगा. तो एक परखने की शक्ति में अगर गलती हुई कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, इस समय सही क्या है, गलत क्या है, एक छोटी सी गलती का इफेक्ट मेरे भाग्य तक पड़ेगा.
1: ये जो दोनों रिश्तेदार थे, जो जिसने फोन मेरे घर पे उठाया और जिसने अमेरिका से रिश्तेदार ने फोन किया, अब मेरे हिसाब से दोनों राइट है. वो कहता है कि तुम छोटे हो उम्र में, पूछो तो सही भाई कैसे हो कैसे हैं, क्या हाल है. तो वो बोल रहे है कि नहीं, मैं तो ये समझ रही थी कि आपका पैसा लगेगा.
0: ये जो आपने अभी कहा ना कि मेरे हिसाब से दोनों राइट है, क्योंकि एक्चुअली दोनों राइट है, लेकिन किसको ये दिखेगा कि दोनों राइट हैं, जो दोनों से डिटैच्ड होके सिचुएशन को देख रहा है. लेकिन उन दोनों को नहीं दिख रहा कि दोनों राइट हैं.
1: पर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो बोलते हैं कि भी कम नमस्ते तो करो.
0: उनका दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू राइट है, लेकिन राइट परखने के लिए हम अगर डिटैच होकर देखते तो हमें ये भी दिख जाता कि दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी तो राइट है. दिस आपको कैसे दिख रहा है?
1: अगर सपोजिंग वो बंदा पूछ लेता कि बेटा तुम मेरे को आज हेलो तो करो, क्या बात है, नमस्ते भी नहीं किया, इतनी जल्दी क्या है.
0: जैसे हमें कोई ऐसा बिहेव करेगा जो हमारे संस्कार के साथ अग्री नहीं करता, हमारी ईगो हर्ट हो गई, हम रिएक्ट कर गए ना. जब रिएक्ट कर गए तब तो एनर्जी सारी चेंज हो गई उसके बाद,
1: रोती हुई आई मैं,
0: क्योंकि हमने यहाँ थॉट क्रिएट कर लिया वो गलत.

0: the minute I am seeing a sanskar which is different from mine, my sanskar says ki jisne phone uthaya usko pyar se pehle baat karni chahiye, wish karna chahiye, courtesy. My programming is fixed. To meri programming ke through hi maine unko dekha, aaine ke through dekha. To main ye dekh hi nahi pa raha ki samne wale ne isliye baat nahi ki kyunki uska nazariya kya tha ki America se phone hai, why to waste their per minute any. Aap us situation ke andar nahi hai. You know, ek hota hai situation ke andar ghuse hue aur ek hai situation se साक्षी है. वो दो लोग सिचुएशन के अंदर हैं. अब एक है जिन्होंने फोन किया, आपने कहा उनको उस बच्ची ने विश नहीं किया, तो वो उनकी ईगो हर्ट हो गई. एक फिर जब उन्होंने डांटा तो वो बच्ची की ईगो हर्ट हो गई, तो वो रोते हुए आई. उसने भी तो उनका नजरिया नहीं समझा ना, दोनों ने नहीं
1: समझा,
0: जोर से डांटा ना.
1: अब इतना इतनी भी अकल नहीं है.
0: हाँ, लेकिन वो बच्ची भी, उसने भी तो वो नजरिया नहीं देखा ना कि हाँ इन्होंने इसलिए डांटा कि मैंने विश नहीं किया इसलिए डांटा. द पावर टू बी एबल टू सी द अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव इम्पोर्टेंट इज वी आर नॉट एबल टू सी द अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव. वी कैन सी ओनली वन पर्सपेक्टिव, सिर्फ एक नजरिया.
1: जिसने फोन उठाया उसको क्या समझ में आया क्यों झड़ रहा है मुझे.
0: जब हमें किसी ने कुछ कहा या किया तो हमें उतना पॉज होना पड़ेगा कि इसके पीछे इनका क्या रीजन, पर्सपेक्टिव या इंटेंशन था. जब तक हम वो नहीं देखेंगे, हम ना व्यक्ति को ना परिस्थिति को परख पाएंगे. इसीलिए तो वो खिड़की खुली नहीं है. खिड़की नहीं खुली ना,
1: मिरर के थ्रू.
0: मिरर के थ्रू मतलब सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव के थ्रू, सिर्फ उस आईने के थ्रू ही हम देख सकते हैं सबको. बहुत सारी, सारा दिन में हमारे से छोटी छोटी छोटी छोटी गलतियां इसलिए हो रही हैं क्योंकि हम सब
1: छोटी नहीं हुई ना ये बात, इतनी बड़ी बात में.
0: लेकिन ये बात
1: वो जब वो घर आए तो बात भी नहीं करी है. महीनों महीनों चला इसको कि बोलती मुझे आज तक किसी ने इतनी जोर से नहीं डांटा.
0: दोनों तरफ नजरिया नहीं देखा, दूसरे के संस्कार को नहीं समझा, फिर उसके बाद ईगो को हील नहीं कर पाए, बात को लेट गो नहीं कर सके. ना लंबा चलता है, चीज इतनी होती है, इतनी सही नहीं परखी तो फिर बाद में निर्णय के लिया इनसे बात नहीं करनी, अभी जल्दी जल्दी ऐसे डांटते हैं. ये कर्म बदल गया, भाग्य बदल गया. ये सारा दिन में अगर हम चेक करेंगे ना तो पता नहीं कितनी लंबी लिस्ट निकलेगी कि जो हम ये कितनी बार ऐसा करते हैं. इसीलिए जितनी पावर्स हमने अभी तक देखी, पावर टू लेट गो, ये सब जो पुरानी बातें हुई बीत गया, लेट को छोड़ना है.
1: पावर टू टॉलरेट,
0: फिर पावर टू टॉलरेट, सहन शक्ति कि दूसरे के संस्कार को एक्सेप्ट करना. तीसरा एडजस्ट करने की शक्ति कि समाने की शक्ति. लेकिन ये तीनों चीजें भी करने के लिए जो चौथी शक्ति वो ये वाली शक्ति है, परखने की शक्ति. मीन्स राइट रॉन्ग, सही गलत, हम बचपन से सीख रहे हैं सही गलत की परख होनी चाहिए. परखो तो सही क्या था, गलत क्या था, सच क्या है, झूठ क्या है, परख के फिर निर्णय लो. वी हर्ड दिस सिंस चाइल्डहुड. लेकिन जो हम पहले परखने की शक्ति बोलते थे, दैट वाज अ लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग कि सही क्या है, गलत क्या है, देखो तो. नो, बट अ लॉजिकल स्पिरिचुअलिटी जो हमें सिखाती है, राजयोग मेडिटेशन से जो हम अपने पर वर्क करते हैं, और हर एक अनुभव भी करेगा उसको, कि जितना माइंड थोड़ा थोड़ा साइलेंस की तरफ, साइलेंस मतलब ये क्लटर जो नॉइज है ये कम होने लगती है, हम अपने ओरिजिनल संस्कार की तरफ जाना शुरू करते हैं, तो जो परखने की शक्ति इमर्ज होती है वो एक आउटवर्डली परखने की शक्ति नहीं होती कि लॉजिकली राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, नॉलेज क्या कहती है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है. लेकिन वो होती है एक इनेट, अंदर से एक जो इनर वॉइस जिसको कहते हैं, जिसको हम इंट्यूशन कहते थे. नहीं, जब मेरे अंदर की आवाज कहती है ये राइट है, ये रॉन्ग है.
1: अंदर वाला तो हमेशा मुझसे बात करता रहता है
0: ना,
1: और कई बार बोलते है मत कर, मत बोल, मत बोल, और मैं हमेशा फंसा.
0: फंसा मतलब अगर नहीं माना तो फंसा.
1: मैं कई बार फंसा बाय नॉट लिसनिंग टू माय अंदर वाला.
0: नॉट लिसनिंग. हाँ
1: सिस्टर, एक बार मैं लोनावला जा रहा था अपने फार्म हाउस, तो अंदर वाला बोला चाबी तो ले लो. तो मैं ऐसा हाथ बढ़ा, मैंने क्यों, माली है उसके पास चाबी है, वहां सब खाना पका के देंगे. वहां गया तो माली के घर में किसी की डेथ हो गई, वो गांव चला गया.
0: जिसको हम अंदर की आवाज कहते हैं ना, वो एक परखने की शक्ति है जो

0: अक्वायर्ड बातों से नहीं, लोगों के ओपिनियन के आधार से नहीं, जो इस समाज में रहते हुए जो बिलीफ सिस्टम्स हमने बने उसके थ्रू नहीं परखता, लेकिन जो आत्मा की इनेट विजडम है, आत्मा को जो अंदर से पता होता है कि सही और गलत क्या है। नहीं, कई बार हम कहते हैं मुझे अंदर से मालूम है कि ये सही है मेरे लिए, मुझे अंदर से मालूम है ये गलत है। वो जो आवाज आती है, वो जो राइट और रॉन्ग हमें बताएगा, वो हमेशा राइट निकलेगा। इट विल ऑलवेज बी राइट फॉर अस, बट नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज स्टार्ट यूजिंग इट मोर एंड मोर।
1: विवेक, मेरा बेटा और मैं एक अपने लिए लैंड लेने गए थे, तो उसके नंबर के लिए विवेक पूछ रहे बोलने लगा, और मैं कि हम लोग वास्तु वाले को बुला ले, उसको पूछ ले तेरे अंदर वाला क्या बोल रहा है। डैडी आई लव इट, डैडी मुझे अच्छी लगी, मतलब मेरे को बहुत अच्छी लगी। न नंबर पूछो न वास्तु पूछो, तुम और मैं दोनों फंसेंगे, क्योंकि वो कुछ बोलेगा ये कुछ बोलेगा, ये हाथ से चीज चली जाएगी।
0: सही बात है।
1: आज तक हमको इतना सुख है उस प्रॉपर्टी से।
0: वन इज अक्वायर्ड नॉलेज and one is the innate knowledge that the soul has.
1: This is beautiful. आपने मुझे याद दिला दी अंदर
0: सही और गलत की जो आवाज, जो हमें पता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन वो जैसे आपने कहा ना अभी, जो जब माइंड क्लटर्ड में होता है तो हमेशा बाहर ढूंढता है सही क्या है गलत क्या है, इससे पूछे, ये करें, इधर पढ़ें, उधर चेक करें। अगर हम सिर्फ 2 मिनट साइलेंस में बैठ जाए, सिर्फ 2 मिनट, हर आत्मा को हर बात का आंसर पता है। We don't need to find out anything from anyone or anywhere. Every soul knows the answer to every question, every issue and every problem in their life.
1: You're so right. ये practically मैंने किया sister. विवेक को किसी ने बोला आप member of parliament के youngsters की जरूरत है आज आपको, नहीं किसी party से ticket लेके लड़ते, this that you're so good in speech. तो मेरे से वो advice लेने आया। मैंने कहा एक काम करो, बाबा के सामने बैठो, मंदिर में बैठो, मेडिटेट करो और अंदर वाले से पूछो, आपको जवाब आएगा।
0: बस
1: वो गया ही नहीं।
0: एक बार परखा सही, फिर निर्णय लेना इज इजियर। इम्पोर्टेंट तो वो परख की शक्ति राइट होनी चाहिए ना। तो जितना आत्मा इस इनेट से अब आंसर निकालने शुरू करेगी हर चीज में, इवन अब अगर जब हमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है 2 लोगों के बीच, जैसे हमने देखा कि दूसरे का संस्कार, हम क्यों नहीं परख पा रहे दूसरे का संस्कार, क्यों हम दूसरे को अपने संस्कार के थ्रू देख रहे हैं, क्योंकि उस टाइम हम इनेट से कनेक्टेड नहीं है, हम ईगो से कनेक्टेड है। हाँ,
1: क्यों इनेट से कनेक्टेड
0: नहीं है? इनेट से कनेक्टेड नहीं है ना। अगर हम इनेट से
1: कनेक्टेड हूँ या नहीं हूँ, आप मुझे कुछ भी बोलते जाएंगे तो मैं इनेट से कनेक्टेड हूँ नहीं हूँ, आप बदतमीजी करोगे तो।
0: वाइज सोल कौन सी है? जो आत्मा अपनी विजडम से कनेक्टेड होगी। आप देखो, जब हम अगेन जब हम महात्माओं के पास जाते हैं, उनके साथ कोई गलत भी व्यवहार करता है
1: तो मैंने देखा, लेकिन मैं महात्मा नहीं हूँ ना।
0: महात्मा नहीं हो, एक मिनट,
1: हम तो
0: महात्मा नहीं हो, मैं दिव्य आत्मा नहीं हूँ, मैं संत आत्मा नहीं हूँ। उस टाइम
1: क्या करना है?
0: उस टाइम मैं नहीं हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं अपनी ओरिजिनलिटी से डिस्कनेक्टेड हूँ।
1: Let us talk to people like me.
0: To people like us only.
1: आप बीच में महात्मा मत लाइए ना। महात्मा तो करता ही है, मैंने देखा हुआ है। एक मेरे सामने जगत गुरु का एक आदमी इतना बोला, उन्होंने सिर्फ बोला आप शायद इसे गलत समझ रहे हैं, ये बात सत्य नहीं है।
0: पहली बात तो हम बार बार ये विक्टिम फीलिंग क्रिएट करते हैं ना कि हम तो संत आत्मा नहीं है।
1: इसमें विक्टिम की बात नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल है। आप यही चीज जो उसने जगत गुरु से बोलता ही जा रहा था, बोलता मैं सुन के मेरा मन करता अभी मारो, और वो देख रहे हैं, बोलते शायद नहीं, आपके ना आपको मिसअंडरस्टैंडिंग होगी।
0: तो अब वो संत आत्मा उस सीन में ही लेकर आते हैं कि एक व्यक्ति आया, ठीक से नहीं बात की, अब्यूजिव लैंग्वेज, रॉन्ग लैंग्वेज यूज की, यहाँ वो संत आत्मा बैठे हैं, यहाँ आप बैठे हैं, वो शांत थे,
1: मैं तो बहुत शांत
0: हो रहे थे। ओके, नाउ What was the difference between the 2 souls only at that time? आप में और उनमें उस समय क्या फर्क था?
1: वो महात्मा थे, मैं एक्टर था।
0: महात्मा थे, मैं एक्टर था, मतलब क्या?
1: मतलब
0: महात्मा कोई रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है,
1: तो फिर
0: कोई प्रोफेशन थोड़ी है कि वो महात्मा थे, मैं एक्टर था। महात्मा कोई प्रोफेशन थोड़ी है। महात्मा है मतलब
1: क्वालिटीज तो है उनमें,
0: है मतलब डिवेलप की
1: ओरिजिनलिटी भी है, काम भी है उनका, और उनको उसके
0: प्रैक्टिस
1: महात्मा को प्रैक्टिस भी तो होती है ना।
0: प्रैक्टिस तो हम भी कर रहे हैं ना। सी ये सब प्ली देके अपने आप को छुड़ाना नहीं है उस पुरुषार्थ से, वो महात्मा थे मैं एक्टर था, नहीं, वो आत्मा है मैं आत्मा हूँ, वो आत्मा उस क्षण अपनी ओरिजिनलिटी से कनेक्टेड थे, मैं आत्मा उस क्षण अपनी ओरिजिनलिटी से डिस्कनेक्ट होके अपने ईगो में था। वेरी सिंपल। आपने कहा हम संत आत्मा नहीं है, हम सब संत आत्मा है। परमात्मा हमें कहते हैं आप सब ओरिजिनली ब्यूटीफुल प्योर दिव्य आत्मा हो, सिर्फ संत आत्मा भी नहीं हो, दिव्य आत्मा, डिवाइन स्वरूप, देवी देवता। देवी देवता मतलब डिवाइन आत्मा, हर आत्मा वो है डिविनिटी। संत आत्मा प्रोफेशन नहीं है, आप एक्टर हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ईगो होनी चाहिए और आपको ऐसे
1: ईगो होनी चाहिए नहीं बोला, मैं एक्टर हूँ महात्मा नहीं हूँ, तो दोनों में डिफरेंस है।
0: मैं एक्टर हूँ इज अ प्रोफेशन।
1: तो क्या हुआ,
0: तो मैं एक्टर हूँ इज अ प्रोफेशन,
1: महात्मा तो
0: इज नॉट अ प्रोफेशन।
1: तो
0: महात्मा हूँ, एक महात्मा एक्टर बन सकता है,
1: महात्मा का बिहेवियर,
0: एक महात्मा एक्टर बन सकता है,
1: क्यों नहीं बन सकता?
0: सिंपल, मतलब आत्मा महान है, प्रोफेशन कोई भी हो, ऐसा नहीं है कि मैं एक्टर हूँ तो ईगो होना है इज फाइन।
1: सही बात है, कई महात्मा तो मर्डर भी करते हैं।
0: हाँ, दैट्स इट, राइट। सो इट्स नॉट अबाउट हमने कौन से कपड़े पहन लिए,
1: आपका पॉइंट समझ में आया,
0: हमने कौन से कपड़े पहन लिए, हम आश्रम में रह रहे हैं, जंगल में रह रहे हैं, या एक बहुत बड़े बंगले में रह रहे हैं, इट डजेंट मैटर। महात्मा इज नॉट अ रोल, महात्मा इज नॉट अ प्रोफेशन, महात्मा
1: मीन्स करेंगे बहुत सुंदर,
0: महात्मा मीन्स वो आत्मा,
1: वो आत्मा हाँ,
0: जिसने अपनी महानता को, मतलब अपनी डिविनिटी को, अपनी ओरिजिनलिटी को इमर्ज किया है, फिर उसके बाद चाहे वो एक्टर का प्रोफेशन है या बिजनेसमैन है, वो फादर है, वो कुछ भी हो सकता है।
1: यू सर राइट, अभी मेरे बात समझ में आई, क्योंकि अब मुझे थॉट आया कि मैं कई महात्माओं को जो ये रोल करते हैं लेक्चर देने का, रिलीजियस एक्स्ट्रा जो भी है, वो लोगों को मैंने गुस्से में भी देखा है, लड़ाई करते हुए भी देखा है, एकदम लो लेवल की बातें भी देखी है, पैसों के लिए भी उनको ग्रीड देखा है।
0: बिल्कुल,
1: यू आर राइट।
0: विच इज ओके, अगेन हम यहाँ जजमेंटल नहीं,
1: मैं एक्टर और उसको नहीं करूंगा,
0: बट यहाँ हम उनके बारे में भी जजमेंटल नहीं हो रहे, ठीक है। वी आर नॉट हियर टू बी जजमेंटल अबाउट एनीबडी, वी आर हियर टू अंडरस्टैंड कि आत्मा एवरी सोल, एंड एवरी सोल मीन्स एब्सोल्यूटली एवरी सोल ऑन दिस प्लैनेट। परमात्मा ने कहा हर आत्मा मीन्स हर आत्मा, चाहे इस समय वो कुछ भी कर रही है, एंड कुछ भी कर रही है मीन्स कुछ भी कर रही है, कुछ भी। अगर आज कोई आत्मा निमित्त बनती है मर्डर करने के, टेरर क्रिएट करने के विश्व के अंदर, वो आत्मा भी ओरिजिनली, वो आत्मा भी ओरिजिनली बहुत ब्यूटीफुल एंड प्योर आत्मा है, लेकिन इस समय किसी कारण से जो कंडीशनिंग हुई, जो सिखाया गया, जिस प्रभाव में आए, जो भी रीजन, डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, अपनी ओरिजिनलिटी से कम्प्लीटली डिस्कनेक्टेड, वो एक एक्सट्रीम है कि ओरिजिनलिटी से इतने डिस्कनेक्ट हो जाते हैं कि हम ऐसा कुछ कर्म करने लगते हैं। एक है हम सब लोग, लेट्स से मेजोरिटी, जो अपनी ओरिजिनलिटी से उतना डिस्कनेक्टेड नहीं है कि हम किसी के साथ ऐसा मर्डर करें या कुछ करें, लेकिन हम ओरिजिनलिटी से थोड़ा डिस्कनेक्टेड हैं, तो हम गुस्सा करते हैं और ये सब सब कर सकते हैं, विच इज ऑल्सो नॉट आर ओरिजिनल। और एक ऐसी सेट ऑफ आत्माएं हैं जो अपनी ओरिजिनलिटी में बहुत ज्यादा रहते हैं, जिनको फिर हम लेबल करते हैं नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट दे वेयर एंड हाउ दे लुक, बट बिकॉज ऑफ हु दे आर, कि वो आत्मा संत आत्मा है। जरूरी नहीं है जो संन्यास करते हैं, आश्रम में रहते हैं, या जो आपने कहा वर्कशॉप्स कराते हैं, वो संत आत्माएं होते हैं। आपको सारा दिन में चलते फिरते आपको ऐसी आत्मा मिलेगी, आपको कोई गेट पे एक सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा, कोई आप रेस्टोरेंट में जाएंगे आपको जो खाना परोस रहा होगा, आपको उससे मिलकर ऐसी एक वाइब्रेशन आएगी, आप कहेंगे संत आत्मा है ये, बिल्कुल आएगा कि नहीं आएगा?
1: लोग तो यहाँ तक बोलते, मैं किसी गाय को हाथ लगाने वाला था तो मैंने पूछा ये मारती तो नहीं है, तो बोले नहीं, तो एक तो बिल्कुल संत है।
0: तो संत मतलब किसको हम संत लेबल करेंगे?
1: जिसको मतलब
0: जो आत्मा अपनी ओरिजिनलिटी से ज्यादा कनेक्टेड है, मतलब जो आत्मा शांत रहती है, प्यार कर

0: करती है, अनकंडीशनली हमें एक्सेप्ट करती है, जिसकी वाइब्रेशन, और किसको बोलते हैं संत, छोटे बच्चे को,
1: फ्रेंडली चाइल्ड,
0: छोटे बच्चे को, जिसकी इतनी प्योरिटी है, इतनी डिविनिटी है, विच मीन्स इट कैन बी एनीबडी. नाउ नॉट, इट्स नॉट गोइंग टू बी पीपल जिनके पास सिर्फ टाइटल है कि वो संत आत्मा है, ये 100% है. ना हमें ये सोचना है कि जिनके पास ये टाइटल है कि ये संत आत्मा है वो सारे परफेक्ट होने चाहिए, वो भी नहीं हमें देखना. क्योंकि आज क्या होता है, ऐसा देख के फिर हम कई बार डिसइल्यूजन हो जाते हैं. हम परखने की शक्ति रॉन्ग उस टाइम यूज करते हैं, क्योंकि बहुत लोग आजकल कहते हैं ओह ये लोग भी ऐसे करते हैं, तो फिर हम क्या, बट वाई आर वी कंपेयरिंग विद एनीबडी, वाई आर वी जजिंग एनीबडी. लेट्स हैव नॉलेज. नॉलेज ये कहती है कि हर आत्मा प्योर है, राइट? हर आत्मा अपनी प्योरिटी से अलग अलग मैग्नीट्यूड में डिस्कनेक्ट हुई है, कोई थोड़ा, कोई ज्यादा, कोई बहुत ज्यादा, लेकिन हर आत्मा के पास वो पावर है कि वो अपनी ओरिजिनलिटी पे वापस जा सकती है. कोई आत्मा हो सकती है घर गृहस्थ में रहती है, सारा दिन बिजनेस कर रही है, कारोबार कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन अपनी ओरिजिनलिटी से बहुत कनेक्टेड है, कनेक्टेड है. तो वो अपनी डिविनिटी को अपने डे टू डे कर्म में रेडिएट करती है. कोई आत्मा हो सकती है कि वो आश्रम में सेवा करती है, कहीं भी पूरी दुनिया में, लेकिन वो आत्मा अभी जर्नी पर है, वो अभी अपनी ओरिजिनलिटी से उतनी कनेक्ट नहीं हुई है, वो वर्क कर रही है अपने पर, मेहनत की, लेकिन हुई नहीं है. तो हमें ऐसे को देखकर डिसइल्यूजन भी नहीं होना है, जजमेंटल भी नहीं होना कि ऐसे आश्रम में रहते हैं, सब कुछ छोड़ दिया, संन्यास किया, फिर भी गुस्सा करते हैं. नो, इट्स ओके. दिस इज कम्पैशन, दिस इज अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव. एंड उससे क्या होगा, ना हम उनके प्रति जजमेंटल होंगे और ना हम अपने को डिसएम्पावर करेंगे.
1: संत के जो आश्रम खोल के बैठे रहते हैं उनको गुस्सा करके तो देखता भी हूँ और बोलता भी हूँ ये संत थोड़ा ही है.
0: हमें किसी के ऊपर जजमेंटल नहीं होना है. हमें हर आत्मा की यात्रा पता नहीं है. आज अगर आप मुझे देख रहे हैं, सपोज आई एम ऑन दिस जर्नी, दिस जर्नी इज अ वेरी लॉन्ग जर्नी. ऐसे नहीं है आज डिसाइड किया तो ये ठीक हो गया, आज डिसाइड किया तो ये परफेक्ट हो गया. नो. अब आज अगर मैं गुस्सा कर रही हूँ यहाँ, एंड आप कहें फिर फायदा क्या है, आप इतना सुना रहे हैं और आप ही गुस्सा कर रहे हैं.
1: मुझे बोलते हैं कि आप शिवानी दीदी के साथ इतने सारे सीरियल किए और छोटी सी बात पे आपको गुस्सा आ गया, तो फायदा ही क्या हुआ जाके.
0: हाँ.
1: मुझे बोलते हैं,
0: राइट?
1: तो दे आर राइट.
0: हमें ये चेक करना है
1: सिस्टर, इट इज इम्पॉसिबल. देखिए, मैं किसी महात्मा को देखू गांजे पी रहा है, मैं किसी को देखू सिगरेट पी रहा है, किसी को देखू मैं खराब काम कर रहा है, किसी को देखू मैं लालची कर रहा है, तो मैं चुप रहा हूँ और बोलू हा हा हा हा, ऐसा तो होता ही है. ऐसे पॉसिबल है? एवरीबडी हैज टू प्ले द रोल. हाँ, तो फिर आपने, आप कितने एपिसोड्स में बोला आपने ड्यूटी करनी चाहिए?
0: हमारी ड्यूटी माँ करेगी, हमारी ड्यूटी है कि हमें दूसरे के प्रति जजमेंट और क्रिटिकल नहीं होना है.
1: हम जजमेंट कहाँ करें, परखने की शक्ति जो आप बोल रहे हो वो परख रहा हूँ मैं.
0: हमें उनसे कुछ सीखना है, कुछ लेना है या नहीं लेना है, आवर चॉइस, वो परखना है. ठीक है, अगर आपको मेरे अंदर कुछ बहुत गलत दिखाई देता है, तो अगर आपको मेरे साथ बैठ के नहीं शेयर करना है, ये आपकी चॉइस, फाइन, ये परखने की शक्ति. लेकिन लेबल करना, जजमेंटल हो जाना, क्रिटिकल हो जाना, ये लोग तो ऐसे हैं, ये लोग तो ऐसे हैं, ये ऐसे ही करते हैं, फायदा क्या है, इससे तो आपकी पावर डिप्लीट हो जाएगी, मेरा नुकसान नहीं होगा.
1: लेकिन मैं परखा कि ये आदमी, ये संत का ये सब दरबार खोल के बैठा है और इतना बड़ा आश्रम खोल के बैठा है, वहां मैं अपने बच्चों को भी बोलूंगा, वाइफ को भी बोलूंगा कि वहां बिल्कुल जाने की कोई जरूरत नहीं है आपको.
0: विदाउट बीइंग क्रिटिकल.
1: समझाएं कैसे विदाउट बीइंग क्रिटिकल?
0: कोई भी चीज ऐसी ना करें जिससे अपनी ही शक्ति डिप्लीट होती है. इट्स लाइक ये दिखा, ये ठीक नहीं है, उधर से नहीं चलो, पांव टूटेगा. सिंपल, इतना ही परखना है सिर्फ. उधर नहीं,
1: चक्कर में आ जाते हैं ना इनके,
0: तो वो अपनी परखने की शक्ति की कमी है.
1: मेरे बच्चे और बीवी है तो मेरा काम है ना, मैं तो परख लिया.
0: परख लिया
1: तब उनको समझाऊं कि ऐसा है, ऐसा ऐसा मत जाओ.
0: वेरी ट्रू. विदाउट बीइंग क्रिटिकल एंड जजमेंटल अबाउट दी अदर पर्सन, दिस इज नो, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट.
1: लोग अपनी जायदाद दे देते हैं ऐसे लोगों

0: वो ज्वेलरी दे देते हैं, पैसा लेके बैठ जाते हैं, क्या क्या कैसे कैसे काम होते हैं आपको मालूम है क्या?
1: अपने परखने की शक्ति की कमी है ना, हमें करना है करें, हमें नहीं करना है नहीं करें, इज फाइन। लेकिन जो हम बहुत ज्यादा दूसरे को क्रिटिसाइज करने की जर्नी पे चले जाते हैं, राइट, सपोज मेरी वाइट ड्रेस है लेकिन उस पे काले दाग हैं, ठीक है, आपने देख लिया, आपको नहीं आना नजदीक, दूर रहना है, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, परख लिया। लेकिन दूर बैठकर अगर आप मुझ पर लगे हुए काले दाग के बारे में सिर्फ डिस्कस करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, उससे नफरत करेंगे, तो उससे मेरे काले दाग पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं अपनी यात्रा पर हूँ अपने दाग को कम करने के लिए, लेकिन मुझे क्रिटिसाइज करते करते आपकी ड्रेस पर काले दाग ज्यादा लग जाएंगे।
0: मेरी ड्रेस पर काले दाग कैसे लगेंगे सिस्टर? मुझे एक बहुत जरूरी ये जानना है और मैं इसको इमीडिएटली नेक्स्ट एपिसोड में आपसे ये पूछूंगा।
1: थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू। ओम शांति।
2: वी डू नॉट सी द वर्ल्ड थ्रू अ विंडो, वी सी द वर्ल्ड थ्रू अ मिरर। सीइंग द वर्ल्ड थ्रू अ विंडो मीन्स सीइंग पीपल एंड सिचुएशंस एज दे आर। Seeing the world through a mirror means seeing situations and people through our sanskars. When we see people through the filter of our sanskars, we will perceive their emotions, words and actions according to our sanskars, and we may not be able to understand them truly as they are. Raj Yoga meditation helps to silence our turbulent sanskars of ego, anger, hurt. This helps us to understand situations and people as they are, and this increases our power to discern. Power to discern or discriminate means to know what is right, what is wrong, what is true, what is false. Often we discern what is right or wrong based on acquired information, people's opinion, or belief systems created by society. This may or may not be right for us. Discernment based on our innate wisdom, which we call the inner voice or intuition, is right for the soul.
1: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in. or call us on 0999 559 660.

0: को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माइसेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: इतिहास से, भूगोल से,
2: समाज से, संस्कार से,
1: आधुनिकता से और विचार से,
2: खूबियों से भरा अनोखा है मेरा भारत।
1: एक महान राष्ट्र है मेरा भारत,
3: अतुल्य भारत।
2: चलिए आपको बताते हैं
1: भारत की 69 ऐसी विशेषताओं के बारे में
2: जो बनाती हैं भारत को पूरी दुनिया से अलग
1: और प्रदान करती हैं हमें एक गर्वित भारतीय नागरिक होने का हक।
4: क्या आपको पता है कि किसी भी देश में कार से की गई लॉन्गेस्ट जर्नी यानी सबसे लंबी यात्रा 31,798.2 किलोमीटर है। यह यात्रा भारत में ही की गई है और इसे करने वाले 3 भारतीय हैं जिनके नाम हैं आतिफ अब्दुल्ला, शीतल श्रीवास्तव और दीपक श्रीवास्तव। इस यात्रा को इन तीनों भारतीयों ने 30 अप्रैल 2015 से लेकर 7 जून 2015 तक संपन्न किया जिसे वे ड्राइव अगेंस्ट कैंसर कहते हैं। इस यात्रा का उद्देश्य कैंसर डिटेक्शन और उसके ट्रीटमेंट के लिए फंड्स रेज करना था।
1: भारत की विशेषताओं को करते रहिए सलाम।
2: पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो। जय हिंद,
1: जय भारत।
5: भारत अनोखा राग है।
6: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
7: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट। वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रांग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
6: आप सुन रहे हैं पुणे।

0: मिस्टर आयर, आर यू देयर?
1: हम तुम जिसे कहता है शादी,

सड़कों पे गाओ सीटी बजाओ कर दो कहीं भी सवेरा। वाह वाह वाह वाह हम तुम जिसे कहता है शादी।

वाह वाह वाह। हम तुम जिसे कहता है शादी, जूनो है

0: क्या करते हो?
1: क्या कर रहा हूँ?
0: भैया छोड़ो ना।
1: क्यों छोड़ूं?
0: प्लीज समझो ना।
1: क्या समझूं?
0: वो लोग देख रहे हैं।
1: अरे तो देखने दो और जलेंगे।
0: अच्छा तो ये बात है तो मैं और पास आऊँ?
1: आओ ना।

0: दिल एक जान है हम तुम, जमाना क्या कहेगा।
1: छोड़ दो असल, जमाना क्या कहेगा।
0: हाँ हाँ हाँ इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा।
1: जमाना क्या कहेगा,
0: दीवाना क्या कहेगा।

0: लेकिन क्या बिगड़ा?
1: मैंने नहीं, सब कुछ उसी ने निकाला है बेटा।
0: थोड़ा उधर
1: क्या बताऊं, सब किस्मत के फेर है बेटा। लेकिन यही मेरे पास नौकर था, आज मैं इसका करता, इसे छुपा छुपा बेचता हूँ।

जवान के हाथ जवानी पांव पड़े दिन रात सुने फिर हाय वो किसकी बात हो।

0: एक्सक्यूज मी, हम पहले कहीं मिले नहीं?
1: सॉरी, डोंट रिमेम्बर.
0: तुम, मेरा मतलब है आप रमा से नहीं?
1: शी इज डेड. माय नेम इज रोजी.

वाले पगड़ी वाले पगड़ा वाले टोपी वाले टोपे वाले पगड़ी वाले पगड़ा वाले गोरे गोरे काले काले आज मेरे मेहमान।

0: मैडम बिलबिलास।
1: पापा खान, पापा खान, मिस्टर खान डांस करना मानता।
2: अच्छा, ऑल राइट, ऑल राइट।
0: मिस्टर जॉन, मिस्टर खान, दोनों मांगे बिलबिलास।

नजर उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी जान पूछी जो कहर की नजर उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी धरती पे है जो कदम गैर का

0: मैं कहती हूँ छोटे भैया,
1: ये तुझे खासी मिली।
0: आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। मैंने आज तुम्हारी रक्षा की, ये कभी न भूलना।

0: झूठ कर फांसी के हाथ से गिर गया या जानबूझ के गिरा दिया? झूठ क्यों बोलती हो भाभी?
1: मीना, भाभी को झूठा कह रही हो? मेरे पास गर्मी से कुछ बातों के लिए मैं जा रहा हूँ।
0: नहीं भैया, ये तो बहन की प्रार्थना है। बहन हो और भाई राखी न बंधवाए तो बड़ा अपशगुन होता है भैया।
1: होता है तो होने दो।

सिस्टर दोस्त कहा कोई तुम सा नहीं कोई सिस्टर चलेगी जाने दो

0: छोड़ो
1: देखा दिल न तोड़ो
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे
0: अज समझे।

की एक रानी को, धूप की एक मस्तानी को, मस्ती भरी जवानी को। हाय रे हाय रे, मैंने देखा, मैंने देखा, मैंने देखा, देखा जी मैंने देखा, हाँ हाँ जी मैंने देखा, मैंने देखा, देखा जी।

0: कटहरिया ओए आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ कटहरिया ओए ओए तेरी तिरछी नजरिया
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए ओए ओए ओ जाने सारी नगरिया
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे करिया ओ कटहरिया।

0: अगोरे अगोरे अगोरे भड़के बुदन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय।

0: बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, हो नटखट हो खटपट हो पनघट हो झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़,
1: तोरे नैना हो मीठे बहना, और तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय। मुझको बना दे बावरिया, आके सीधी लगी दिल में बैठे कतरिया, ओ कमरिया हाय हाय हो तेरी तिरछी नजरिया।
0: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया ओए होए ओ जाने सारी नगरिया।
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया, ओ कवरिया
0: ओ गुजरिया
1: ओ कवरिया
0: ओ गुजरिया।